हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1990 और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये सुपरजोंग थे साथ ही यार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है ठीक किया है।

और छोटी सी उम्र में रोग तो लग जाते हैं हमारे दोस्तों, और जब रोग लग जाते हैं तो वो कभी नहीं, मूवी का नाम है बैराग छोटी सी उम्र में। और नाइटी जी लता जी का ये जोन थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा बानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे ही हो तुम

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: कौन है?
1: आशिक।
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंद एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तो

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

और तुम इस तरह से और मेरी जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आँख और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिंगेल नाइटिंगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी, मेरी हम सफरी, और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो, हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। निवर्रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई, और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी, और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है

0: हेमंददा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

जी आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे, तो हम और एक चलते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो।

के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप इस

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

मूवी दौड़ हाउस से भी हमने पेश किए हैं ए मेरी दिले नादा तू गम से न घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं तुम मुझे यूं भुला न पाओगे।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और जरूरत खत्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं याद ना जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफी जी की आवाज में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उन तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए

ये शुक्रिया है जिंदगी, चलने का नहीं सही, संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से, आप सुनेंगे द टाइटल।

अभी आप सुन रहे थे अजय तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता बुढ़ा खास्ता। द माइती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत में क्या हो गए।

अभी आप सुन रहे थे वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत में क्या हो गए। दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में फिर से आने वाले हैं। तू मिले तो पूछू तुझसे, क्या है ये न्याय तेरा।

दमाई ती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। तो मिले तो पूछूं तुझसे, क्या ये है न्याय तेरा, दुनिया को दिए उजाले और मुझको दिया अंधेरा। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, जो जितना दूर होता है नज़रों के, उतना ही वो दिल के करीब होता है। मुश्किल से भी जिसके एक झलक देखने को मिले, वो जिंदगी में सबसे खास होता है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी एक थी रीता से आप सुनेंगे, मैं किसे अपना कहूँ आज मेरा कोई नहीं, लता जी के साथ में, द मैन विद द गोल्डन वॉइस मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

फ्रॉम द मूवी एक थी रीता से अभी आप सुन रहे थे। मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं। जब कोई इंसान अपना दर्द किसी से नहीं कह पाता है, तो वो उस दर्द को अपने डीपी या स्टेटस लगाकर बताने की कोशिश करता है। बस ज़रूरत होती है तो उस इंसान की जो उसे समझे। अभिलाषा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं वादियाँ मेरा दामन।

फ्रॉम द मूवी अभिलाषा से हमने पेश किए हैं वा दिया मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। लता जी आपको सुनाने वाले थे। मांगी थी मैं यानी मांगी थी मैंने दुआ रब से देना तो कुछ ऐसा दो जो हो अलग सबसे रब ने मिला दिया हमको आपसे और कहाँ बस यही कार्टून डिफरेंट है सबसे। फ्रॉम द मूवी आया सावन झूम के इसी फिल्म से हम पेश करेंगे किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा मत देखो बुरा मत कहो। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आया सावन, झूमके से अभी आप सुन रहे थे। सुनने वालों, शर्ली जी भी प्रोग्राम को सुन रही है और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे तो कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से आप सुनेंगे किशोर दा और आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना। फ्रॉम द मूवी आंसू बन गए फूल से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शिर्ली जी के वास्ते और सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी आंखें से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे मिलती है मोहब्बत यानी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी आंखें से हमने पेश किए हैं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता, क्योंकि वक्त तो सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर बीता हुआ वक्त कभी लाया नहीं जाता। मुझे ऐसा मिला मोती फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। लता जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कोई अंबर में ना होगा। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पिघलता आसमां से हमने पेश किए हैं। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरा दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हैं और लिखा कुछ नहीं। चला भैया आजा रसिया, फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे चला भैया आजा रसिया फ्रॉम द मूवी मन की आंखें से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और लता जी आपको सुनाने वाले थे। किसी के आने से जिंदगी नहीं चलती और किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस इंसान कभी कभी थक हार कर रुक जाता है, इसी का नाम जिंदगी है। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि वो ये है कि न कभी वक्त ठहरता है और न कभी जिंदगी ठहरती है, बस हम लोगों को आगे जानी चाहिए। हम दोनों मिल के कागज़ पे दिल के यानी कागज़ पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप चिट्ठी लिखेंगे तो। तुम्हारी कसम है फिल्म का नाम, दमायती मुकेश जी के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले हैं।

हम दोनों मिलके कागज पे दिल दे चिट्ठी लिखेंगे जवाब आएगा। आशा जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम्हारी।

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां ज्योत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं

जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक संसार की सुख की इच्छा कभी ना करे।

ऐसी धारणा है कि पुण्य करने से सुख प्राप्त होता है और पाप करने से दुख मिलते हैं। लेकिन पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या, दुख क्या है, इस भजन में इस बात को बड़ी भली भांति समझा।

और नई सुबह का नया नजराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो, उठो, तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम, नमस्ते। धर्म कर्म फाहुन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

हरम कर्म का प्रोग्राम ही रेडियो स्टेशन फाह रेडियो के जरिए आप हर एक सुबह सुन सकते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो तो तार कीजिए न्यू सीफ तक दिलीज फाइव ट्वी ट्वी फीड सीफ पर सुबह सुबह ले शिव का नाम बन जाएंगी तेरी बिगड़ी।

शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सबका उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे और भोले शंकर आपके जीवन में खुशी ही खुशी भर दे। ओम नमः शिवाय।

0: ए बंदे क्यों करते तू अभिमान, तू तो है दो दिन का मेहमान।
1: कर तू अभिमान रे बंदे, झूठ
0: भी पर छोड़ के जाना है।

फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का सुबह का भजन का प्रोग्राम धर्म कर्म आप सुन रहे हैं। हर एक काम के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। अगर आप एक भजन प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो भी 9 सी फर दिस फैक्ट्री टू फी सी फॉर तार कीजिए।

ही गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। सही बात है, अब की बार सच्चम शिवम सुंदरम, लता दीदी की आवाज में।

शिव भजन आप सुन रहे थे। शिव भजन के बाद अब की बार देखो राम आई सोनू निगम और साथियों के आवाजों में। धर्म करम फाउन हिंदुस्तानी जो कि सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

धर्म कर्म फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजनी कार्यक्रम आप सुन रहे। हर एक काम के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो के दफ्तर से न्यूसी फन तक दिल्ली से 5 2 2 3 4 हमारा तार का नंबर है, नंबर है भाका नया नजराना ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम, नमस्ते। धर्म कर्म फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए। फा ऑन के टीम की ओर से आप सभी को एक शुभ दिन प्रगट हो।

ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। सभी भक्त प्रेमियों के लिए मैं एक राम भजन, रघुपति राघव राजा राम सच्चम शिवम सुंदरम, ये सभी भजन आप सभी के लिए मैं पेश करता हूँ।

सभी सुनने वालों को एक बार फिर राम राम नमस्ते। धर्म करम फाहौन हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये भजन कार्यक्रम अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 CFO तक 3 CS 5 2 8 2 8 4 CFO पर आपको तार करना है।

भजन भी प्रोग्राम में आप सुन रहे थे। हरिओम सरन के आवाज में एक सुंदर सा भजन मैं चुन के रखा हूँ। आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो।

नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने, अब की बार कृष्ण भजन प्रोग्राम में आप सुनेंगे सुना सुना लाके धीरज की धाम, गोकुल को छोड़ चले धनश्याम। आप सभी को एक शुभ दिन प्रगत हो फाहुन के फूल टीम के ओर से।

सुना सुना लागे गोकुल को छोड़ चले धन श्याम, तू प्यार का सागर है, मना दे के आवाज में आप सुनेंगे।

सी जिंदगानी है, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में, हर बात में खुश रहो। आने वाला कल किसने देखा, आने वाला कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। जय बजरंगबली।

के नगरिया जाना है बंदे साई भजन भी प्रोग्राम में आपने सुना। साई भजन के बाद मैं चुन के रखा हूँ श्री राम के गली में तुम जाना। सभी प्यारा प्यारा भक्त प्रेमियों के लिए

श्री ग्राम के गली में तुम जाना, वहां नाश्ते मिलेंगे हनुमाना। मन मैला और तन को ढोए, न ये तेरा न ये मेरा।

सही बात है, सब कुछ तो उसी महान का, जैसी सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को।

रात में क्या क्या ख्वाब देखा है, द मैन विल द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद के मीठी आवाज में अभी आप एक गीत को सुना। फाहन हिंदुस्तानियों के सुबह के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आज के बाद, आज रात्रि के बाद है कि 75 साल की उम्र में बॉलीवुड का मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का मृत्यु हो गया। इनका पैदाइश हुआ इन फेस्टेक में और इनका मृत्यु या रात्रि में हुआ है, आज रात्रि में 8 अक्टूबर 2020 गोवा इंडिया में हार्ट सेल स्थान के जरिए। एक दो लाइन में उसके बारे में कहूँगा और कल शाम के प्रोग्राम में एक खबरें इसके बारे में बातचीत होगा।

और फिलह इस वक्त अभी अंदर आया है अब द आफील एम्स्टरडम देन हाग तो थ्रू द फारेंस फील्ड एंड लेसेंडम सीफ किलोमीटर्स एंड अपा आठ सांसद एम्स्टरडम तो सुन सांसद असंदेलफ एंड सांसद सेट 6 किलोमीटर्स

हद का लब पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो, ओ निगाहें मस्ताना।

0: मस्ताना,
1: निगाह मस्ताना। हकीकत में ये समा सुहाना नहीं है। अगर आपको बाहर निकलना है तो अपन पारंपरिक छतरी मत भूलना दोस्तों, इसलिए कि बारिश हो रहा है। आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाना।

में प्यार भरी बातें भर लो। दोस्तों कृष्ण ने क्या कहा है, कृष्ण सर हुसलख इमती ओग बहांदल सक नो तथ्य निफो ब्लैस कालम ब्लैस तैर एंड लो पुयाख।

तेरी सूरत से किसी ने नहीं नहीं, फिर कोई मुस्कुराए, फिर कोई मुस्कुराए, फिर एक फूल खिला सिर्फ आंखों के जरिए।

कार्यक्रम अपने हुए पराये का सॉन्ग माइटी मुकेश के आवाज में भी आप ये सॉन्ग को सुना। और इस फिल्म में काम किया दोस्तों मनोज कुमार और माला सिन्हा। मनोज कुमार माला सिन्हा के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर श्यामी कपूर और लीना का एक फिल्म, और फिल्म का नाम है जाने अनजाने। जाने अनजाने फिल्म और जाने अनजाने का रोमांटिक डुएट आप सुनेंगे।

नीली नीली आंखों पर क्या क्या नहीं हो जाता है दोस्तों, शमी कपूर और लीना दोनों का फिल्म जाने अनजाने का सॉन्ग।

दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज रात्रि की बात है, 8 अक्टूबर की 8 तारीख, तो रात्रि में मृत्यु हो गया है और वो भी बॉलीवुड का मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का असली नाम था विश्वानंद पाटेकर, और आप जानते हैं बॉलीवुड में अपन अलहदी स्टाइल से, एक अपार स्टाइल से फिल्म में काम किया है। और नाना पाटेकर का पैदाइश हुआ एनियन फैक्टर मुरुद इंडिया में, और इनका मृत्यु हो गया 75 साल की उम्र में मृत्यु हो गया। और एक एक एक बेटा था इनको मल्हार पाटेकर, और पिता और माता का नाम था संगना पाटेकर और धनकार पाटेकर, एक भाई अशोक पाटेकर और दो भाई, एक अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर। बहुत सी फिल्मों में काम किया, एक फिल्म भी लिखा नेहरी निकटक में, वो था फिल्म प्रहार। पाटेकर का एक दो फिल्मों को नाम मैं लूँगा दोस्तों, कल शाम का प्रोग्राम का, शुक्रवार के शाम का प्रोग्राम गीतों का संगम में जब सितारों का सफ़र मैं पेश करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपसे एक दो और बातें बताने के पाटेकर या दादा पाटेकर के बारे में। दादा पाटेकर ने काम किया फिल्म वेलकम, क्रांति वीर, शक्ति सलीनी, फिल्म वनवास, फिल्म वेलकम बैक, फिल्म पहार, फिल्म परिंदा, फिल्म काला, फिल्म गुलामे मुस्तफ़ा, फिल्म शागीर में काम किया, फिल्म टैक्सी नंबर 9211 में काम किया, फिल्म तरका, फिल्म शक्ति द पावर, फिल्म हीरा फेरी, और बहुत से फिल्मों में दादा पाटेकर ने काम किया।

कुछ पता नहीं छुपाने से। दोस्तों डेलफ में कल के बात है कि सिपाही चार चोरों को गिरफ्तार किया है। बात यह है कि ये चारों लोग एक आदमी को लॉक किया, कहा कि एक फैट बाइक वो बेच रहा है। तो आसपास किया ओस ब्लॉक जो डेलफ में है, वहाँ पर एक कैलर बॉक्स में ये चोरों आदमी को ले गया है और वहाँ पर उसका पैसा ले लिया है। आसपास के लोग जब हल्ला सुना तो सिपाही को तार किया। सिपाही जब वहाँ पहुँचा तो दो चोर को गिरफ्तार किया है और एक के पास सभी पैसा भी जेब में रखा था। ये भी होता रहता है दोस्तों, कई तरह के तरीका है, कई तरह से लोग चोरी करते हैं, लॉक करते हैं, फॉल्स बरिश्त पठाते हैं, दरवाजे पे खटखटाते हैं, आन बेल करते हैं, सारा बच के रहना है चोरों से। हमें तुमसे प्यार कितना, श्रेया घोषाल के मीठी आवाज में आप सुनेंगे।

एक और खबर है दोस्तों, वातरिंग, वातरिंग में 14 साल के बाद डिस्किसिस पॉलिटिकल इसी फरकन के बारे में झगड़ा हुआ, फिर भी 14 साल के बाद एस्तर पाल गाया गारा गया है न्यू फॉर न्यू मॉस्के। यह मॉस्के बनेगा जहां पर एक यंगर सैदरिन था वातरिंग में, और जो हारी हुक्स्ट्रा के मोर पे था वातरिंग का, तो ये जगह पर अब एक मॉस्को ही बनेगा। पहला पाल गड़ा गया है दोस्तों, और आने वाले दिनों में ये मॉस्को तैयार हो जाएगा। यह है वातरिंग का खबर। चांद सितारे फिल्म कहो ना प्यार है, ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल दोनों ने फिल्म में कमाल किया। मिस्टर सानू के आवाज़ में आप सुनेंगे।

बस बस ताशा ताशा कली खुली और हम उसकी दीवाने हैं दोस्तों। बैरन डचलैंड में एक जगह है बैरन, वहाँ पर क्या हुआ है, एक एक एक याकर आप जाते शिकारी, वो कल रात के बात है, वो कल रात्रि को नाक कैकर से वो शिकार खेल रहा था तो उसे नज़र आया एक पुमा। आप जानते पुमा क्या होता है, वो एक शेर होता है लेकिन और छोटा रहता है, तो वो उसके नज़र आया, वो एक वीडियो भी बनाया, सिपाही को दिखाया, तो जोर तोर से ड्रोन और हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ सुजाती लोग वहाँ पर आसपास जो लखाफन है मेंशन को उसके पीछे जो जगह है बैरन, वहाँ पर अभी ये पुमा का तलाश में है। अगर आप आसपास में हो सोचते हो गए आपको जंगल में जाना वहाँ तो मत जाइए, पता नहीं कौन सा जानवर है लेकिन सिपाही कहता है कि ये पुमा है। ये है द इस्लाम के कहानी जो कल रात्रि को एक शिकारी ने को नज़र आया एक पुमा। अब की बार कल्याण जी रिमिक्स से मैं निकाल के रखा हूँ श्रिया घोषाल वंस अगेन।

स्केल्ड स्वेग के कहानी है दोस्तों। कल के बात है हुफकाडे जो है वहाँ पर एक आदमी एक दूसरे को भोका है छुरी से। सिपाही वहाँ पहुँचा है और रास्ता बंद किया है, लेकिन आदमी जो एक काम किया है वो भाग गया भी, सिपाही उनके तलाश में है। यह है स्केल्ड स्वेग के कहानी, एक ढीरबा है। हर एक काम जो आपको केसरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 4 तक। 3 से 5 2 8 2 फिर से 4 पर आपको तार करना है।

एक दिल रुबा है मेरा दिल तो तुम पर खफा है। फाहुन हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है, बृहस्पतिवार है और अक्टूबर के 8 तारीख हो गया है।

करके प्यार करके देखो ना, जब देखना है तो पहले प्यार करना दोस्त। ये दूसरी कहानी है, जहाँ पर मोहब्बत होता है, जहाँ प्यार मोहब्बत होता है, वहाँ हर एक तरह के कहानी तैयार हो जाता है। दिल का रिश्ता, दिल का रिश्ता बड़ा प्यार।

0: मिनट बाकी है 10:08 5 हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है। हर एक काम जो आपको रेडियो को सिर करना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे डॉक्टर से न्यू सीफन तक 3 5 2 2 4 सीफर पर आपको उतार करना है। और अगर आपको बाहर निकलना है दोस्तों तो ध्यान रखना, बाहर बारिश हो रहा है, अपन पारापली या छतरी मत भूलना। एक सॉन्ग मैं तैयार करके रखा हूँ और इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सॉन्ग चलना चाहिए और सॉन्ग का बोल जो है, जी हाँ दोस्तों, जो एक गीत जो है उसका बोल जो है मैं ढूंढता हूँ, ढूंढते ढूंढते ढूंढते कभी हो जाता है कभी ढूंढते ढूंढते लोग भी थक जाता है, फिर कोई बात नहीं, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है और दिल रुबा के साथ क्या क्या नहीं होता है दोस्तों आप जानते हैं, जहाँ दिल होता है तो वहाँ दिल वाला होता है या दिल वाली भी होता है।
1: नहीं छुपा
0: इसकी कहानी मैं एक बार फिर दोहराता हूँ।

ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0315 3625 2828 फिर

दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सही बात है, ये कुछ बात करना है तो कान में कीजिए या और करीब आके कीजिए। अगर आप दूर रह के बात करेंगे तो सभी लोग सुन लेंगे और सभी बातें अभी नहीं सुनाई देगा। तो फिल्म अमानत का सॉन्ग है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये सॉन्ग चलेंगे।

रहकर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों फिल्म फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। फिल्म फर्स्ट जो समय पर सुनाम देश में पेश हुआ तो थिएटर द पारल इनका ट्रेलर दिखा रहे थे। आप जानते हैं थिएटर द पारल दलिक्स फिल्म का एजेंट था और थिएटर जसोदरा नहीं थिएटर द पारल दलिक्स फिल्म के नहीं था, थिएटर जसोदरा था दलिक्स फिल्म के और इंडिया ओवरसीज का फिल्म थिएटर द पारल में पेश किया जाता था। तो थिएटर द पारल फिल्म फर्स्ट का ट्रेलर पेश करता था तो एक दो हफ्ता पेश किया, उसके बाद थिएटर जसोदरा भी इसका ट्रेलर शुरुआत किया। तो दपाल का मालिक जो था सोचा है कैसे हो सकता, मैं तो इंडिया ओवरसीज का एजेंट हूँ और ये फिल्म इंडिया ओवरसीज का है, कैसे हो सकता है कि दलिक्स फिल्म का थिएटर जो है थिएटर जसोदरा ये फिल्म पेश करे। तो ये बात रेक्टर के सामने दोस्तों जज के सामने पेश किया गया। लोग को मालूम नहीं था कि उन दिनों में देवर प्रिंट में भी फिल्म बनते थे। तो ये फिल्म फर्स्ट देवर प्रिंट में बना और ये खियाना में ये फिल्म पेश होता था दलिक्स फिल्म का थिएटर में। तो थिएटर जसोदरा का जो एडवोकेट था वो बताया कि देखो देवल प्रिंट में है और ये फिल्म हम लोग अभी खरीदा हो तो ये फिल्म जसोदरा भी पेश करी। तो रेक्टर थिएटर जसोदरा का मालिक को कहा कि हाँ आप सही बात कहते हो, इन्हें कहा कि आप फिल्म पेश कर सकते। तो थिएटर द पारल का जो मालिक था वो तो ये बात हार गया। तो ये फिल्म दो थिएटर में पेश किया गया दोस्तों लगातार। और क्या बात सही बात यह है कि थिएटर जसोदरा न सिर्फ फिल्म फर्स्ट पेश किया, नहीं इसके साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है डबल फिल्म एक पैसा पे पेश किया। तो ज़्यादा से लोग थिएटर जसोदरा में जाते थे और दपाल में उतना लोग नहीं जाते थे, इसलिए कि एक पैसा एक टिकट से दो फिल्म आपको देखने को मिलता था। यह है उन दिनों का कहानी। तो मैंने बताया फिल्म फर्स्ट का एक दो लाइन में एक दो बातें तो मैं चॉइस करके रखा हूँ। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानो, चाहे तू मानो या न मानो। फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग है जिसमें जितेंद्र एंड बबीता ने काम किया।

0: न माने फिर भी एक चीज मांगता हो, एक चीज मांगता है हम तुमसे पहली बार।
1: एक चीज मांगते हैं।
2: क्या
0: चीज है?

0: अगले इतवार
1: जी सरकार।
0: अच्छा है त्योहार।
2: तीनों का पुजारी किशोर कुमार एंड आशा भोसले, दोनों की मीठी आवाज़ों में यह सॉन्ग अभी आपने सुना। दोस्तों, जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, बात यह है कि बॉम्बे में 3 हफ्ता लगातार जितना सिनेमा है, सभी सिनेमा में राजेंद्र कुमार का फिल्म सिर्फ पेश किया गया। तो बीच में राजेंद्र कुमार घर पर बैठा था और उसका धर्मपति बीबी का सहेली घर पर आया, तो ये दोनों बैठ कर बातचीत कर रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने कहा अपन बीबी से, धर्मपत्नी से, कि क्यों ना आप लोग चला जाता हो एक सिनेमा, एक पिक्चर जाके देख लो घर पर बैठे हुए हो। तो उसका धर्मपत्नी जो है, उसका बीबी जो है राजेंद्र कुमार के, वो कहा कि कौन सी कौन सिनेमा कहाँ पर हम जाए फिल्म देखे, सभी सिनेमा में तो तोर फिल्म आपका फिल्म पेश है। तो इन्हें मालूम नहीं था कि 3 हफ्ता लगातार सभी सिनेमा बॉम्बे में जो है सिर्फ इनका फिल्म पेश किया। तो वहीं से इसका पद्धति मिला, इसका नाम पड़ा जुबली कुमार। तो जुबली कुमार का एक दूसरा फिल्म गोरा और काला, जिसमें हेमा मालिनी के साथ वो काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग लता एंड मुका, नाइट मुकेश एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दोनों के आवाज़ में सुनिए।

है हमेशा धीरे धीरे बोलना, इसलिए कोई सुन ले आपका दिल का बात जो है। इतने कमजोर मत बनो, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

दिले यार फिल्म का नाम है किशोर राय एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी दोनों के आवास में एक गीत अभी आप सुन रहे थे फाह हिंदुस्तानी पर आप चुन है। और अब की बार दोस्तों ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें फिल्म दो रास्ते का सॉन्ग

ये रेशमी सुल्फे इन्हें देखकर जी रहे थे कभी। सेक्स बॉम्ब राजेश खन्ना। दोस्तों मुमताज काम किया राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में दो रास्ते। मुमताज शुरुआत किया फिल्म में काम करने के, तो दारा सिंह के साथ लगभग 10 फिल्म बनाए मुमताज। तो जब दारा सिंह की फिल्म कम बने लगल तो मुमताज इंडिया ओवरसीज नहीं बॉलीवुड का जो फिल्में था इंडियन फिल्म्स, तो उसमें ये शुरुआत किया दूसरे फिल्म में काम करने को। तो लेकिन फिल्म जो डायरेक्टर थे इन्हें काम पे नहीं लेना चाहते, कहा कि ये तो दारा सिंह के साथ झगड़ा लड़ाई का फिल्म में काम किया और लव स्टोरी में ये काम नहीं कर पाएगा। फिर भी जब आया जोर तोर से फिल्मों में तो लोग घबरा गया दोस्तों। लगातार लगभग 6 या 7 फिल्म बनाया जो एक बॉक्स ऑफिस निकला। सभी फिल्मों से ये फिल्म भी दो रास्ते एक हिट फिल्म था मुमताज का। लव इन टोक्यो 6 का स्पेशल आप जानते हैं जॉय मुखर्जी का कमाल था। उस समय जॉय मुखर्जी आशा के साथ या आशा परेख के साथ फिल्म में काम किया। नारा का मतलब क्या होता है दोस्तों?

सयोनारा के बाद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, बात सही है या नहीं? किसी न किसी से कभी न कभी और कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब दिल है, छोटा सा दिल है, तो उन्हें देना पड़ेगा। जब दिल आप देंगे तो दूसरा दिल आपको मैसेज हो सके और बड़ा दिल आपको मिल जाएगा और प्यार भरा दिल मिल जाएगा। लेकिन जब दिल तू सैनिक रहे, दिल तू दबाए के रखिए, न बटिए तो कैसे चली भाई लोग, हम लोग चाहे बाट के खाए के। तो जब दिल है तो उसे दिल दिल से मिला कर देखो, आप जानते हैं, तो मिला ले उससे, तो दिल दो दिल जब मिल जाएगा तो दो दिल जब मिल जाएगा तो चार हो जाएगा दोस्तों। इन एंड इन इज फील, आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। फिल्म का काश्मीर के कली, श्यामी कपूर का कमाल था फिल्म में।

का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुने हैं, आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने निस्ताई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नूप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जब दो होती हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आप अगर आपका ख्वाहिश है अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

ये होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

आज रपट जाई हो तो हमें ना उठाई हो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन तख्तक में से निकाले फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाए, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुनकी मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है,

ने सनम को ख़त लिखा, और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालने शकील बदायूं उन्हीं की लिखी हुई गीत और हम आपको सुनाए फिल्म आदमी में से निकाल कर फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर चलिए कुछ बदलाव लाते हैं इस तरह से।

यही प्यार है लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आर डी बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: कमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सूत्रमेर से मीला जी, मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है? प्यारी गीत।

सी एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी भीगी भीगी सी बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुनाते हैं ये नंबर।

टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की हम आपको सुनाए हैं, और शंकर जय किशन के साज पर फिल्म प्यार ही प्यार में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये गीत आप सुनिए, बस इस तरह से आ रहा है श्याम जी। हाँ ये गीत

मैति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने निकाले हैं नेघंती नेघन शस्त्र से 1969 से ये गीत। चलिए प्रोग्राम में हम पेश करते हैं क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म धर्मात्मा में से नेघंती फेफ से इफ तक का ये गीत 1975 का ये गीत क्या ख्याल है। हाँ

एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत नेगेटिव 5 इन सही में तो 1975 का ये गीत फिल्म धर्मात्मा में से हमने निकाले हैं। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

जी हाँ, तुम बिन रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया ये शानदार गीत काफ़ी प्रचलित था, अब भी है और शायद ऐसा रहेगा भी, यानी बहुत पॉपुलर था, है और पॉपुलर रहेगा। ये शानदार गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं राहत फ़तेह अली खान। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान आपको क्या सुना रहा है।

0: राहत फतेह अली खान जी और सुशांत जी मिलके फिल्म दे दना दन में से हमने निकाल कर आपको सुनाई है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, क्या ख्याल है अगर जे ये हम आपको सुनाएंगे।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: वाह क्या बात है, लता जी की आवाज में आपने सुने ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है और कार्यक्रम आप सुन रहे जहां भी होंगे जो भी कर रहे होंगे एक बार फिर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आपको हृदय से स्वागत किया जा रहा है।
1: Geschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden.

मधुमन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। फिल्म साजन बिन सुहागन 1978 येसुदास उषा खन्ना के साज पर हम आपको ये गीत सुनाए हैं। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आप कार्यक्रम नज़दीक से बैठ कर सुन रहे हैं जहाँ तक मेरा ख्याल पता चला है, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

आतिफ असलम आपको सुनाएं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए हमने ये गीत रखे हैं, क्या ख्याल है? आ रही है सलमा आगा जी। जी हाँ, सलमा आगा जी।

0: सलमा आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की कार्यक्रम में, आपको अवश्य अच्छा लगा होगा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है, चलो सुनते हैं ये गीत। हाँ
1: मने संग रहने की
0: अच्छा
1: आए।

0: लता जी आपको सुनाए हंस परदेसी और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ऐप करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे अल्फानंद रैन के रहने वाला श्रीमान, चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। और क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं
1: के आ गई रुत मस्तानी ओढ़।

ढोल सजना ढोल जानी रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जी, जी हाँ, अपने झड़कने वाले जिया के बारे में क्या कह रहा है। चलो सुनते हैं, बहुत दिन हुए हम भी नहीं सुने कि धड़कते हुए दिल कैसा होता है। राहत फ़तेह अली खान जी।

जिया धड़क धड़क जाए। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या देखते हैं शारदा जी, राहत फतेह अली खान के धड़कने वाला दिल को राहत दे सकती है। चलो सुनते हैं।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

चौहान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे, ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है, तो लीजिए। आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल, फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह यह कव्वाली था, पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी, और मैं तो मुकेश द हार्ट रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेकन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म, और हम आपको सुनाए। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

ते दिल ही जाने लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार मिलके दोनों आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और फिल्म तो बहुत प्यारा था रूप तेरा मस्ताना 1972 का नेहन तीन त्वेन सेवन तक का ये फिल्म हम आपको दिखाए नहीं, फिल्म के गीत आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ, गुलाम मोहम्मद के साज पर। जी चलो सुनते हैं रफ़ की आवाज़ में निखते एन एस एस तक का ये गीत, क्या ख्याल है।

उनका बढ़ा जो हाथ यहाँ दिल लुटा दिया। रफ़ीकिया आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी राज।

अरे गा तेरे संग या मेरे संग मेरे साजना, हमने पेश की एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी आपको सुनाए फिल्म अभिनेत्री में से निकाल। जी हाँ, चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और

जो तुम हंसोगी रोएगी दुनिया या हंसेगी दुनिया, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकालकर हम ये गीत पेश किए ओवर शाह फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और देखते हैं निगति एन सैफ दख का ये गीत है। चलिए देखते हैं अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो कौन सा है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये गीत। हमने चून किए लेकिन सुना नहीं, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। आप सुनोगे, मैं भी साथ सुनता हूँ।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं तुम हमका ऐसा का देखत लैला। जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश की। और चलो देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म मन मंदिर। फिल्म मन मंदिर में से निकाले हैं निगद एन सही बंद का ये गीत, 1971 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने एक दो बार कहा था लेकिन एक बार फिर कह देते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जी हाँ एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है जो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, सभी म्यूजिक डायरेक्टर से ज़्यादा करीबन 455 या 54 होगा, 55 या 54 यानी 450 तक फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दी है।

जादूगर मेरे सैया एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी निगद ए नसीब तक का ये फिल्म है मन मंदिर में से निकाले है एलपी के साज पर यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलिए अगला गीत हमने प्लेन में रखे हैं लेकिन ये गीत हमने सुना नहीं, यहाँ कुछ जिक्र हो रहा है चल सिनेमा देखें या दिखाएं, पर बहरहाल एवरग्रीन किशोर कुमार और देखते हैं आशा जी फिल्म वक्त में से निकाले हैं। चलो सुनते हैं ये सिनेमा दिखाने का सिलसिला या देखने का सिलसिला।

आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाएंगे ये होटल जाने का सिलसिला और बाजार जाने का सिलसिला और सिनेमा दिखाने का सिलसिला हम आपको सुनाएं, बहुत सारे सिलसिलाएं हम आपको सुनाएं। और फिल्म का नाम हमने बताया था वक्त, जी हाँ वक्त, लेकिन पूरा नाम हमने नहीं बताया, फिल्म है वक्त का दीवार। आप सोचोगे गंगा वक्त में तो ऐसे गाने नहीं हैं, जी नहीं, फिल्म है वक्त की दीवार। तो वो तो फिल्म दिखाने के सिलसिला था, अब यहाँ डूबने मरने की बात हो रहा है, तो चलो सुनते एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी ये डूबने मरने के क्या सिलसिला है।

हाँ, तो आपने सुने चल दरिया में डूब जाएं कि सिलसिला हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चुने मैं चला रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर प्रेम कहानी में से निकाल कर निकली फैफन सैफन दख का ये गीत। चलिए आपको सुनाते ये सेमी क्लासिकल इस तरह से। रफी साहेब सुमन कल्याणपुर।

हाय रे सावन बीता जाए, ये शानदार गीत रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाएं ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस श्री

हमें क्या लेना, हमें क्या लेना, फिल्म पारस में से निकाले हैं, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और लता जी मिलके आपको ये शानदार गीत सुनाए हैं। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, ये गीत मैत मुकेश के बाद एक बार फिर मैत मुकेश है इस तरह से। फिल्म चांद ग्रहण, फिल्म चांद ग्रहण में से निकाल रहे हैं ये गीत।

फिल्म मधुमेहताई मधुमती में से निकाले हैं ये शानदार गीत मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ ये प्यारा द्वैत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, जी बस दिल थाम के बैठिए और ये गीत से लुत्फ़ उठाइए, इस तरह से आ रहा है।

तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है, सुना रहा है आरडी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्ते पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदी बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेद इंद्रिय से ही तक 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर निहित इंद्रिय से इवंत का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूं, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साज इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था। तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था, वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब के आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट की। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी, और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाले, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद हमने बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर, असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन सकते थे। तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

है वही, जी हाँ तू है वही। आर डी बर्मन के साथ पर ये गीत हम पेश किए फॉर हिंदुस्तानी रेडियो। और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का, निकती तुम तख्त का ये गीत। तो लीजिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार, किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं। जी हाँ, नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहून हिंदुस्तानी। www.faahoonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। देवानंद का ये फिल्म है, जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ इसके बारे में भी नहीं बताएंगे लेकिन बस सुन लीजिएगा। शंकर जयकिशन के साथ पर सिर्फ।

सूर्य स्वाधिकार जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रूना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रूना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

चले।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती ए ने 50 रफी साहब की आवाज़ में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त ए ने 50 से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउर हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, अगर आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

0: चुंडा महाकाया सूर्य कोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमन करता हूँ। ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब फिर एक बार उपस्थित है स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज के कार्यक्रम में पैनल के पीछे बैठे हुए शांता खेमई जी और दूसरा ओर बैठे हुए बबली आसरा जी और तीसरा ओर बैठे हुए शीला जी, जो आज हम लोग के साथ पहला बार स्टूडियो में उपस्थित है। तो शीला जी, आपको बहुत बहुत से हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और अभी तो और बातचीत होएगा, पर शांता जी क्यों ना और एंट्री हो जाए तो हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी हाँ, जरूर से। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। ये जाने पहचाने शब्द है, तो जाने पहचाने भी यहाँ है। आपको हार्दिक से स्वागत है ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में, और स्वीकार कीजिए यहाँ से प्यार भरी नमस्कार शांता जी का। शांता जी की
0: कुछ पुलिंग स्त्रीलिंग में तो हो ही जाता है ना,
1: अक्सर हो जाता है।

जब आई मुसीबत तो कोई भी साथ ना था, नज़र उठा के देखा तो सिर पे मेरे सतगुरु तेरा हाथ था। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

और नमस्ते पहुंचे। आप सभी लोग को मेरा नमस्कार पहुंचे, बड़ों को सबको पाए लगी, छोटों को मेरा राम राम और खुये नाफन।

0: अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में सब कुछ दान कर दिया था, कवच, कुंडल, सोना, चांदी, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में भूखे क्यों रह गए? क्योंकि एक ऋण था जो उन्होंने कभी नहीं चुकाया था, और वो ऋण आपके ऊपर भी हो सकता है। मृत्यु के बाद जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनके सामने अमृत और भोजन नहीं बल्कि सोना और हीरे थे। भूख से तड़पते कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा,
1: मैंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, कवच, कुंडल, सोना, चांदी सब दे दिया ताकि कोई भूखा ना रहे, और आज मैं स्वयं स्वर्ग में भूख से तड़प रहा हूँ। ये कैसा न्याय है देवराज?
0: देवराज इंद्र ने कहा,
1: अंगराज, ये सच है कि तुमने जीवन भर दान किया, लेकिन हर मनुष्य तीन ऋण के साथ जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहले दो तुमने चुका दिए, लेकिन तीसरा यानी पितृ ऋण खाली है। तुमने अपने पितरों को कभी अन्न और जल अर्पित नहीं किया, एक बार भी उनके लिए श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए तुम्हें स्वर्ग में भोजन नहीं मिल रहा।
0: लेकिन कर्ण का उत्तर भी उतना ही सच था। उन्होंने कहा,
1: मैं श्राद्ध कैसे करता? मैं तो सूत पुत्र बनकर जिया, मेरे माता पिता तो राधा और अधीरथ थे। मेरे वास्तविक वंश का ज्ञान मुझे मृत्यु से कुछ क्षण पहले हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पितर कौन हैं।
0: इंद्र ने कहा,
1: उचित कहा तुमने कर्ण, लेकिन तुम्हारे पितर आज भी तुमसे अन्न और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो तृप्त नहीं होंगे तुम्हें भी तृप्ति नहीं मिल सकती।
0: कर्ण ने अपनी भूल सुधारने का अवसर मांगा। इंद्र ने कहा,
1: ठीक है कर्ण, मैं तुम्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने की अनुमति देता हूँ। जाओ अपने सभी पितरों को तृप्त करो और पितृ ऋण से मुक्त हो जाओ।
0: पृथ्वी पर आकर कर्ण ने सबसे पहले अपने पिता सूर्य देव को अर्घ दिया, फिर अपनी जन्मदात्री कुंती और पालक राधा और अधिरथ का तर्पण करते हुए कहा,
1: आप सभी तृप्त हों और मेरे वे सभी पूर्वज जिन्हें मैं जानता हूँ या कभी जान ही ना पाया, आज आपका पुत्र कर्ण आपको अन्न और जल अर्पित करता है, इसे स्वीकार करें और मुझे इस ऋण से मुक्त करें।
0: इन 15 दिनों में कर्ण ने हजारों भूखों को भोजन कराया, हर एक दाना अपने पितरों को याद करके अर्पित किया। स्वर्ग लौटने पर कर्ण के सामने सोने चांदी की जगह भोजन परोसा गया और उसी क्षण उनकी भूख शांत हो गई। लेकिन असल में ये भूख अन्न की नहीं थी, ये भूख कर्तव्य की थी। कर्ण को दिए गए वो 15 दिन इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। वही 15 दिन आज पितृपक्ष कहलाते हैं। हर साल ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं, और श्राद्ध केवल एक पूजा नहीं है, ये अपनी जड़ों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। तो आप इस पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए क्या कर रहे हैं?
2: अब यही बात तो सबसे मूल्य है कि आप अपने पूर्वजों के लिए पितृपक्ष में क्या करते हैं। तो सुनने वालों, आज हमारे साथ हमारे सहयोग दे रहे श्रीमती शीला जी, और शीला जी जो हमारे सीनियर के और अनेकों स्थानों पे कितना काम करते हैं। तो शीला जी, आपको हार्दिक से स्वागत एक बार फिर, और आप जो हमारे सीनियर तनी बचाई के बोलक पर है ना, बुढ़ पुरनिया बोलिए पुराना भाषा में, तो अपना चली,
3: अपना चली।
2: हाँ, डांट दे शांता जी,
3: सीखे क्या है?
2: पर हमारे जो औदर है ना,
3: औदर है,
2: तो औदर के लिए आप बहुत कुछ करते हैं हॉलैंड में, और उस अंतर्गत में आप ऐसा क्या है जो, क्योंकि ये बात कहे जाते हैं ना आपके मुख से मैंने सुना है, पर हम औरों के मुख से सुने हैं कि शीला जी जब पेंशन से चल जाए तो क्या होगा? दूसरे इवेंट हेल भी सुंदर इवेंट सो एक्टिव बेसिक मैथ ऑन से औदरन, ऐसे कहने के तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने अभी हाल ही में एक जगह गए जहां पर हिंदुस्तानी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, और शांता जी भी वहां आए थे, जॉनी भाई भी वहां थे, और हम सभी कुछ न कुछ करते हैं। कभी शांता जी जो और गीतों का और लेस देते हैं, तो कहीं जॉनी जी जो और नाटक को लिखते हैं और प्रेजेंटेट करते, तो हम लोग का जान पहचान वाले ढेर सारे हैं। पर कहने के तात्पर्य ये है कि जब बुढ़ापा आ जाता है तब हम लोग धीरे धीरे उस ओर बढ़ जाते हैं जहाँ औदरन रहते हैं, डक फॉर लाइफ आदि। तो उस अंतर्गत में आपके हम लोग को कुछ सुनाइए।
3: वहाँ जो आते हैं ना, वो अपने जो साथ है सभी लोग अपने लेफ्टाइट के लेफ्टाइट्सगनोते हैं सभी लोग ना, जो घर पर रहते हैं और सेल्फस्टैंडिंग रहते हैं, आते वहाँ पर अपना दिन बिता करके दाख ओफ़ंग में दाग एक्टिविटीज करके अपना घर फिर चला जाता है सभी लोग। उन लोग के बहुत ज़रूरी है कि घर पर वो खाना ना पका सकते हैं, वहाँ सब घर पर अकेला भी ना रह सकते हैं दिन भर, इसलिए वहाँ पर आते हैं सभी लोग कि आ करके अपना जितना हम लोग के वहाँ एक्टिविटीज बा हम लोग एक्टिविटीज करेला सबके साथ हो करके वहाँ तब सब कोई शाम को घर पर चला जाता है। वहाँ उन लोग के दिन ऐसे बहल जाता है।
2: कहने के तात्पर्य यह है कि हम जब हमारा पेंशन हो गया है, हमें बुढ़ापा भी थोड़ा आ गया, फिर भी कहना नहीं चाहता हूँ शांता जी, पर कह देता हूँ, पर हम लोग के लिए दाख बस्तेदिंग हॉलैंड में ये सब चीज़ बनाया गया है। और ये दाख बस्तेदिंग जो है, देखो अनेकों अनेकों शहरों में होते हैं, हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं चौताल सुनाने को, तो कहीं जाते हैं रामलीला खेलने को, और सब जगह हम लोग देखते हैं कि हाँ सभी जगह ये सब चीज़ें होते, पर इवेंट इन फंड मऊत और फंडित जो आजकल ऐसे हम लोग के, हम लोग सौभाग्य कि आप ऐसा चीज़ बना रहे हम लोग के लिए, और हे भी सुंदर दातुदात दूत। शांता जी, इस पर आप क्या, क्योंकि आप भी कभी काल के कभी योगा तो कभी संगलेस इधर उधर और उधर के साथ बेसी रहते हैं, उस पे आपके क्या ख्याल?
4: आपने एक शब्द इस्तेमाल की है, बुढ़ापा और गरीबी। बुढ़ापा मेरे अनुभव से बुढ़ापा और गरीबी लोग, मैं कहती हूँ उसको कहते हैं जो आप, जब आप क्या, आप जो मोबाइल नहीं रहोगे तो आप बूढ़ा हैगा और गरीब है। जब तक आपके हाथ पांव चलते हैं, जब तक चाहे 80 साल को हो या 90 साल को या 100 साल को, जब तक आप अपने आप में कुछ कर सकते हो तो आप धनवान हैं, आप अमीर हैं, आप बूढ़ा ना है और आप गरीब ना है, ऐसे हम देखें। तो उम्मीद जा हैगा जहाँ पे हमारा शिला जी, हमारे शिला जी वहाँ पर सेवा करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे बुजुर्ग जो आते हैं वहाँ पे भी ढेर है जो मोबाइल है।
3: सही बात,
4: हाँ मोबाइल है, पर घर पे अकेले रहने के कारण और इंसान है के कारण
3: अकेलापन जो है, अकेलापन बहुत अपने के महसूस करता है, इसलिए वहाँ आते हैं।
4: हाँ।
3: और वहाँ पर तो अपना अपने लाइफ टाइप के साथ जो हल होता है सबके साथ मिल के रहता है, तो वो लोग बहुत कुछ बातचीत करता है अपने में,
4: सब पुराना यादें जो
3: पुराना यादें सब आते हैं।
4: और आप लोग जो निमंत्रण भी देते हैं संगीत वाले लोग के, तो वो भी आकर वहाँ पर संगीत के अनुसार भी जो पुराना गाना गाते हैं ना, तो वो सब मैं भी देखी ना कि कितने बैठ के रोते हैं। हाँ, और ऐसे है कितने तो हम देखे जो थोड़ा से कमज़ोर हो गए बोलने में, तो वो उसका शब्द जो ना बोल पाए तो उसका आँख बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी है, देखो ना, मैं कहती हूँ भी कि अपना अपना जब तक हाथ गोड़ चले ना, अच्छा कार्य करो रे मेरे मालिक।
3: सही, नहीं जानते हम लोग कहाँ पहुँचो कोई ना।
4: हाँ, जैसे आप करते हैं वहाँ पे।

0: सबके लिए वही हम लोग देते हैं।
1: अब मेरे ख्याल से शीला जी आपके संस्कार भी इसने हैं।
0: जी सेवा करने के लिए।
1: हाँ घर से ऐसे सीख के आए तब जो कोई कहते भी ना जो आपके थैली में है वही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं दे पाओगे। तो संस्कार आप भी अपने घर से अपने आप, धन्य हो आपके माता पिता भी।
0: धन्यवाद है। और वो ऊपर वाली भी देते ना जो हम लोग के बुजुर्ग है वो की जो सेवा करिए उन लोग के आशीर्वाद से और शक्ति मिले और ताकत मिले उन लोग के सेवा करने के लिए और हिम्मत मिले है।
1: बात सही है।
0: प्रेम से करियो सब कुछ। हाँ। प्रेम के काम है ना वो अपने दिल से चाहे उनके करे के अपने दिल से कुछ करियो तो उनके फल जरूर मिले।
1: बात सही है एकदम से। बबली जी,
2: बबली जी भी कुछ कहने वाले
1: थे।
2: बबली जी भारत में कैसे होता है ऐसे ऐसा ऐसा इंस्टांसिस है ऐसा ऐसा डक फॉर लाइफ आदि होते हैं या नहीं होते हैं?
3: आज से 30-40 साल पहले नहीं था, अब वहाँ भी ऐसी चीज वृद्धाश्रम कहते हैं,
1: वृद्धाश्रम
3: तो वहाँ पर वृद्धाश्रम है और वृद्धाश्रम है और उसी के हिसाब से अब बच्चे भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। जब वृद्धाश्रम नहीं थे तो कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता था, सब एक मिलजुल के रहते थे और उसी के कारण ज़बरदस्ती कहीं अपने माँ बाप को छोड़ा तो बेचारे रोते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा। कहीं तो पैसे के लालच में पैसा ले लेते हैं तो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कई अपनी पत्नी की बात सुन के या कुछ और घरेलू होते हैं झगड़े वगैरह उससे छोड़ आते हैं। वो बेचारे रोते हैं सब कुछ करते हैं। ऐसे एक दिन मैंने कपिल शर्मा कौन बनेगा करोड़पति देख रही थी
1: जी,
3: तो उसमें ऐसे जैसे शीला जी दीदी चलाते हैं अपना वैसे वो भी चलाते हैं वृद्धाश्रम, तो औरत बता रही थी जो वहाँ काम करती है कहती बेचारे इतने रोते हैं बेचारे माँ बाप कि कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है लेकिन भारत में ऐसे नहीं है, भारत में वृद्धाश्रम दूसरे तरीके से है। तो वो पता नहीं उसके वृद्धाश्रम में काफ़ी लोग थे वो बता रहे थे, तो करोड़पति खेलने आए ना जो खेल रहे थे वो जो पैसे जीतेंगे वो वहाँ वृद्धाश्रम में दान देंगे। हाँ जी हाँ। और कितने मैं करोड़पति में देखती हूँ कितने लोग ऐसे आते हैं जो पैसे जीतते हैं वो ऐसे वृद्धाश्रम में देते हैं, कोई अनाथ बच्चे अनाथ आश्रम में देते हैं ऐसे। हाँ जी।
2: तो कहने के तात्पर्य ये है कि हम अपने माता पिता अपने दादा दादी नाना नानी जो आज है उनकर और सेवा करने का मौका मिले तो हम जीते जी उसे खूब सेवा करें ना, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
1: बिल्कुल ऐसा।
2: और बाद में एक ना एक दिन तो हम सबके जाना है, तो बाद में जब वो नहीं रहेगा तो क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? और हम आज का विषय जो है पितृपक्ष, पितृपक्ष अभी अनुराधा जी कुछ सुनाने वाले हैं दिल्ली से जो इस समय कार्यक्रम में और सुन रहे हैं और हम सबको लिए और तैयार कर रहे हैं कि कुछ सुनाने के लिए, और मास्टर जी जो उत्तराचल से हम सबको संदेश सुनाने वाला है कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखा जाए कि शायद बचपन में शीला जी हम लोगों ने पितृपक्ष सुनते थे ना सूरीनाम में, और सुनते थे पर उस समय कोई कोई लोग कुछ ना कुछ करते थे और ज़्यादा तादाद में लोग थोड़ा डरते थे कि अरे एक बार कर देंगे तो का अब हर बार करना पड़ेगा, कैसे लड़कों करेगा, और इस प्रकार के बातें होते थे। हमें भी अभी तक ख्याल है उसके उन बातों के। फिर भी अब देखा जाए कि जब जब आपका सत्संग में जा रहे आप संदेश को सुन रहे हैं उसमें और आगे बढ़ते गए, अब देखा जाए कि पितृपक्ष जो होते हैं साल में दूसरा नवरात्रि से पहले वो और गणेश चतुर्थी मनाए लगने हैं और होलांत में गणेश भगवान भी आ गए हैं ये चतुर्थी फेस्टिवल के अंतर्गत, क्योंकि लगभग 195 देशों है और कहते हैं जहां हवा है और जहां पानी है वहां हिंदुस्तानी भी है, ऐसा है शांता जी की ना?
1: हाँ, एकदम बहुत
2: तो जहां जहां हिंदुस्तानी है वहां वहां हमारे और जो त्योहारे हैं

0: त्योहारें भी लेकर हम गए हैं और त्योहारों को मनाने लगा। और खास करके सबसे मूल्य है कि हमने देखा कि होवांत में जब गणेश चतुर्थी फेस्टिवल के अंदर, तो अब जो यहाँ भारत में जो फेस्टिवल डाउन हो जाता है तो व्हाट्सएप बरेख बन के निकल जाता है कि देखिए भाई गणेश जी का और मूर्ति किस प्रकार से फेंका हुआ है, ऐसे हर साल होता है। नवरात्रि के बाद दूसरा फिल्म बनाते, ऐसे हर साल बनाते। पर कहने के तात्पर्य ये मैं कहना चाहता हूं कि होलांत में ऐसा मूर्ति बनाया गया मिट्टी से जो जाकर के जल में छोड़ने से वो बिल्कुल गल हो जाता है। तो धन्यवाद है कि हमारे बच्चों अच्छा उनसे केंद्र दीदा मा कन। और ऐसा अब सी तो मैंने देखा कि गणेश जी का मूर्ति जो और उसके बगल में बैठे हुए मूस उसमें पूंछ भी बना लिया, पूंछ के साथ। तो तरक्की हो रहा है हमारे त्योहारों में, और खास करके जब पितृ पक्ष है तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंतर्गत में। हम पितृ पक्ष में, बबली जी आप बताइए आप क्या करते हो पितृ पक्ष में।
1: पहले तो मैं ये बताती हूँ, जब हम भारत में थे तो छोटे थे तो हमारी दादी ने यानी आजी ने बोलना कि आज तुम जब स्कूल से आओगे तो तुम्हें प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। हम बच्चे थे, हमने कहा बहुत खुश होते कि हाँ आज खाने के लिए खीर बनेगी और वो अरे सब्जी वगैरह सब कुछ बनेगा। तो जब हम स्कूल से आना तो कहना बड़ी भूख लगी है, तो देखना हमारी बड़की भाई और मेरी मम्मी ने और दादी, तो हमारे इतना काम नहीं करते थे वो बेचारे, उन्हें घुटनों का दर्द था तो बैठे बैठे सब कुछ समझाते थे। तो देखना रोटी चावल दाल सब्जी खीर सब कुछ बना है, तो हलवा भी होता था मोहन भोग हाँ। तो अरे वो मनते जाते थे अपना जो कार्य करना है हमारे दादा करते थे। तो उसके बाद जब हमने खाना खाया बड़ा स्वादिष्ट है ये, तो उसमें एक प्रसाद आ जाता है। तो जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं भगवान का नाम लो तो वो भोग बन जाता है। तो बड़े स्वाद से हमने खाना करना, तो कहना किस लिए है, तो उन्होंने बताना जो तुम्हारे आजा नहीं हैं तो आज उनके लिए श्राद्ध किया है, तो पंडित को दान देना गुरुद्वारे में दान देना। तो ऐसे हमारी आजी ने बताना हमको। तो फिर हम बड़े हुए तो फिर तो अपने से अरे आ जाता है कि कैसा त्यौहार त्यौहार या ये भी एक तरह से ये पितरों का त्यौहार है,
2: पितरों का त्यौहार
1: हाँ जी। तो धीरे धीरे फिर सब पता चलने लग गया कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे करते हैं।
2: दिन पर दिन ऊपर ऊपर सब जोड़ देवे है और दिखावे है बतावे है कि कौन जी है कैसे पितर ओके चाहे सेवा करे सेवा। के हमारे देखे में जीते जी सेवा कर ले रहे भगवान हाँ जीते जी में जितना मिले बुजुर्ग अपने आप को अपने जो सामने ऐसे हम लोग बैठे एक दूसरे के सेवा कर ले उसमें जितना सुकून मिले है। तो जो पितर के से पूजे से आज है इसे चले पितृपक तो इसमें जब भी पूजा करिए एक्स्ट्रा भी पूजा करिए तो दिल में इतना सुकून मिले है बताइए। और ये पितर के जीते जी जे अपन माता पिता के दुख देवे है और वो माता पिता जो गुजर जाए दिन लाइफ में ना रहे शरीर में ना रहे तो उस पीढ़ी में दुख आवे है बाधा आवे है। बाधा है जैसे कि पंडित जी बताइए कि घर में जैसे बेटा बेटी है तो उनका ब्याह भी ना हो पावे रुकावट रहे ऐसे ऐसे बहुत से तरक्की ना हो पावे तो मंगे कहूँ काम खोजे वहाँ पे बाधा होवे और जो ये भी काम करे दिखे दो तीन रोज में छूट गया आपके कॉलेज का नाम हो ऐसे कुछ ना कुछ बाधा रहे है। तो ओकर खातिर भी मौका मिले है जैसे आज साल में
3: के लिए हाँ, काम करके
2: जी जैसे इस आयत पे है पितर त्रपक जो चल रहा है तो यहाँ पे भी सुधार कर सके है, और तो कि पितर लोग की खातिर पूजा कर दे, पानी दे दे, श्राद्ध कर दे, वो सब के भी एगो तरीका हो। पंडित से जरूर से पूछो, पंडित ना है तो गूगल महाराज से भी पूछ लो, देख लो, उसमें तो भी बतावे कैसे कैसे ढंग से करे।
3: सब तरीका से सब कुछ सीख सकते हैं ना। हाँ। सत्संग में जाओ, जितना सत्संग में सीखने मिलता है ना और मंदिरों में, तो सब कुछ
2: जी शीला जी, मेरे ख्याल से आज के इस समय पे जैसे ये चल रहा है तो मंदिर में भी मौका हैगा श्राद्ध के जल चढ़ावे ना,
0: तिरंजलि। अनेक अनेक मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम रखा जाता है। हाँ। और पर आप अपने घर से भी कर सकते हैं, तिरंजलि दे सकते हैं। और उस अंतर्गत में अभी कुछ और हम लोग सुनेंगे। अच्छा। क्योंकि मास्टर जी जो भारत से अपना संदेश रखने वाला है।
2: हाँ।
0: तो अभी क्यों ना शांता जी
2: ने एक बार क्योंकि हमने देखे एक मंदिर 10 साल पहले के बाद में बात बता रही हूँ। वो मंदिर भी जब ऐसा दिन आया था ना पितरपक, तो वो भी श्राद्ध करा रहे थे। जो भी चाहे अपने दिल से जाकर वो कुसा पकड़ाते थे और बताते कि ऐसे करो ऐसे कर, अंजलि में वो जल ले, वो जिसमें दूध और काला तिल है और सब ऐसे, तो ऐसे दाएं हाथ ऐसे ना। हाँ, ऐसे, क्योंकि हाथ जो है ना चार कोना है ना, मिडल फिंगर के है, दाएं हैगा पिंकर एंड हैप्पी दी हैंड पालम सो, और चार कैची से चार देवता के समर्पण करल जा है। दाएं कैची से वो पितृ, और यहाँ जो मिडल फिंगर है वो देवता, और
0: अब ये तो शांता जी तो बड़ा चक्कर में छोड़ दिया हम लोग को, पर ये भी इसका सबका अपना अपना मतलब है शांता। हाँ, जी
2: ऋषि यहाँ पे है गा जाते सेल्फ, जैसे पंचामृत लेवे दैट इज फॉर योर सेल्फ।
0: कहने के तात्पर्य है शांता जी, तीन ऋण हम लोग का होता है ना। वैसे तो मैं एक गाना चलवाना था पर फिर भी बातें बात में समय निकल जा रहा है, और तीन ऋण हमें उस पर ध्यान देना है। एक है जो ऋषि ऋण, जिनसे हम लोग सीख पाते हैं, ऋषि द्वारा जो लिखे गए सब पुस्तक आदि ग्रंथों जिसे हम सीख सके। एक है जो पितृ ऋण, और एक है जो देव ऋण। तो ये तीनों ऋणों हमें इस पे ध्यान देना पड़ता है, और ये इनके बारे में हम कहाँ पर सत्संग में जाए मंदिरों आदि में तो हम वहाँ पर सुन पाएंगे। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं शांता जी, और फिर उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत आपने सुने और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है शांता खेमाई जी, जो पनील के पीछे से कुछ ना कुछ गाना खोज खोज करके रख देते हैं। कहते हैं कि शांता चलते हैं तो पिटारा ले करके, और कौन कौन सा गीत उसमें है ये हम सबको नहीं पता होते, पर फिर भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ हर बार आते हैं। शीला जी, आप हमें बताइए ये कि आप औदरन के साथ वहाँ पर और कार्यक्रम करते हैं, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ औदरन जो हमारे पुराने गीतों हैं, जबकि ना कि सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स, क्योंकि पहले होते थे ना, पहले जब शादी होवे तो चाहे जोन हुए, गरीब ताई हुए या अमीर है या गरीब है, फरमाइश तो दुई हफ्ता बजी,
1: वो सही बात,
0: तो उसके बारे में थोड़ा से सुनाइए।
1: देखो जब सब बैठते हैं ना तो हम लोग पुराना गाना, पहले के पुराना गाना हम लोग धरेला यार सस्तर साठ है, तो जब उस समय के गाना हम लोग धरेला तो उन लोग के इतना उन लोग के सब यादें आते हैं ऊपर कि उन लोग अपने में इतना बात करते हैं कि ये तो मेरे मेरे जब मेरे शादी हुआ था ये तब गाना बजा था, वो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग वो पहले पुराना के सब जितना उन लोग के यादें बा सब ऊपर आते हैं, तो उन अपने में गुपचुप करते बात करते है गाना, कोई कोई के हंसा देता है, कोई के रोवा देता है, आंसू निकल आते हैं भी
2: जी।
1: वो भी देख करके बहुत दुख लगता है गा भी, तो भी सोचता हूँ जो मन में है उन लोगों के वो निकाल देते हैं अपना।
2: हाँ ऐसे होता ना वीरसिला जी कि शरीर से कमजोर है बाकी दिमाग अबे जवान है,
1: चलते है दिमाग बहुत, हमें
2: दिमाग जवान है,
1: हमें बहुत गर्व है सबके ऊपर, त्रोत सहेली कि वो लोग आते हैं, वो लोग ना उन लोग के उम्र ना देखियो, जो उम्र देखियो तो सोचियो कितना उन लोग कर लेता है, तो मैं भी कभी कभी चक्कर काट लेता है अपने के खातिर, सोचता हूँ अच्छा चलो देखो ये तो भी हो गया ना, वो भी बहुत बहुत गर्व है सबके ऊपर कि भी आते हैं सभी लोग वहाँ अपना दिन बिताते हैं, बहुत अच्छे हैगा कि यहाँ ऑनलाइन में ये सब
0: फैसिलिटेटर है
1: वो सब मोखलक है कि वो लोग आकर के दिन बिता सकते जो अकेलापन होता है घर पर, और ये हैगा हम लोग के वहाँ पुरानियों के लिए बहुत अच्छा हैगा।
0: शीला जी, हम रेडियो बना रहे हैं और रेडियो में तो मैं नहीं रखना चाहिए, पर फिर भी इसमें मैं थोड़ा से कुछ जोड़ देना चाहता हूँ, ऐसा कि मेरा जो आजी जिसे दादी कहते हैं, आजी जो एम्स्टर्डम शहर में रहते थे और वो ऐसा बना लिया था, अब देखो हम के जब बचपन रहे जवानी रहे तब कभी काल के कभी सच झूठ चलता है और आजी तो बैल करते रहे, पर धीरे धीरे उन्होंने इतना बार फोन कर कर के मुझे रास्ता पे लाया था कि खान और ऐसा बना लिया था। आप आज ही लोगों के कितना क्लाइंट केंद्र है, पर एक क्लाइंट केंद्र हम मेरे लिए कि हर सप्ताह में हफ्ता में सात दिन होता है, और सप्ताह में सात दिन होता, पर हफ्ता में सात दिन में से एक दिन हम अपने आजी के साथ जाते थे खाने को, और खाना दनहा खान रहते और यहाँ से लेकर जाते वहाँ पर, वो उनका ऐसा बना लिया था कि ऐसे बनाइए इच जो बनाइए दी कॉम्बिनेशन फन जो खरेख्तों ने
1: पहले के हाँ खाना
0: कि हमें भी सीख गए थे खाने, शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था पर सीख गए थे खाने को। अब देखिए टमाटर जैसे बनना, टमाटर से आप चोखा बना सकते हैं, आप टमाटर से केचप बना सकते हैं, इसी प्रकार से और जो कड़वा करेला है क्या क्या नहीं बना सकते, किस प्रकार से बनाते थे और क्या कॉम्बिनेशन, कौन ब्रैनो बोने से, कौन उर्दी के दाल से, कौन जाने तो दी कॉम्बिनेशंस एंड एक फिन दैट एक कैप आल्टे दैट हम मिस अपने आजी के। तो दोस्तों सुनने वालों, कहने के तात्पर्य यह है कि हम ये इस कारण रखते हैं कि अगर आपके आजी नानी है अब्बे, क्योंकि एक चीज और रहा शीला जी, हम दो घंटे वहां रहते थे और दो घंटे में आजी इतना बात बताते थे पहले का अब का, दो घंटा लगातार, तो आज नहीं है,
2: आज ये अकेले रहती थी,
0: आज ये अकेले रहती थी। अब देखो यहाँ पर है ना कि ऑनलाइन वार्निंग है एंड तब ऐसा होते थे। और बबली जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी जब आस प्राप्त होता था आजी से, अगर इनके काम चेंज हो जाता, कभी फ्रुकुदीन में जा पाते थे, मेदाख दिन हो जाती, तो नहीं, जब मैंने आजी को फ़ोन करके कहना आजी आज नहीं आ पाएंगे, इनकी काम चेंज हो गया, दोपहर को जाएंगे, तो आजी जैसे एक तरह से मायूस हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा कि इन्होंने आना था और आज नहीं आ पाए, तो कहना हम अगले हफ्ते आएंगे, तो कहना अच्छा बेटी अगले हफ्ते ज़रूर आना। मैंने कहना अच्छा।
0: कहने के तात्पर्य यह है ना कि आजी नानी लोगन दी औदरन दी फरलांगन नारन क्लेन केंद्रन केंद्रन
1: आशा लगाए के बैठे कि हमार लड़कन आए, अच्छा लड़कन ना आए क्लेन केंद्र चल जाए, हाँ। नाती पोता चल जाए, एक दिन जा करके देख लो, चाहे रोज ना जाए पियो सातों दिन, बाकी हफ्ता में एक दिन जो कि पांच छह गो बा, तो उन लोगन बांट लेवो,
0: बांट लेवो,
1: बांट करके जाओ देख लो उन लोग के क्या कमी है, तनी से बैठ के बात कर ले, भोजन कर ले जैसे आप बताते हो।
0: हाँ, क्योंकि उन लोग के खरेखतल से,
1: हाँ उन लोग के जो पहले के खाना है जो बनाते थे ना, पहले तो हम जानी सब बनावे बिना खाली लहसुन प्याज से,
0: हाँ।
1: और ज्यादा उमन कुछ और ना डालत रहीन, मसाला जो पीस के बनाते थे ना, और ज्यादा कुछ नहीं डाले, जो ईसाई जितना आ गया है, सब है सब आ गया डालने के लिए, वो नहीं, बाकी उन लोग के हाथ के खाना इतना स्वादिष्ट होते थे, तो वही सीख सीख करके हम लोग कुछ ले के चला चल आईली है कि उसे हम लोग बनाए ला, बाकी जो है बोली ला कि लड़कन चाहे कि सीख लो बैठो जो पहले के बात है।
2: शीला जी आप सही कहते हैं, मैं ये बोली कि आप सही कहते हैं, क्योंकि हम जब अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठती हूँ ना सहेली लोग के साथ, तो वो अक्सर यही बात करते कि मेरे को बहुत पछतावा है, मेरी माँ कहती थी, मेरी आजी कहती थी सीख लो, अगर आज मैं सीख ली होती तो आज बहुत काम निकलता, ऐसे सब कहते हैं। अब पछतावा है, बाद में पछतावा होता है,
1: वो सही बात। देखो हम अपने की जब बोली ना, मेरे आजी जो थी तो आजी जानते थे कि मैं कंदोरों को बैठती थी ना सूरीनाम में, तो जब कोई जाती थी उनके पास मेरी सबसे सनेसा पठाती थी, मैं जाती थी आजी के पास, बाकी रोज नहीं जा पाती ना, बस सनेसा शीला के बलाई दियो, तो जाए तब आजी का भय, तो आजी धीरे से कनवा में बोले पैसवा कब बटेगा। और खाना जो बनाते थे ना, खाना बना करके भी अगोटे बैठ के अगोटे थे ना, तो हम लोग जाए तो पूछी आजी एक एक कैसे बने लो, तो जा आजी बतावे तो मोरी में धर ली, तो घर पर जब जाए तो हम भी उही तरीका से हम भी ट्राई करते, हम भी अपने बना देते,
2: तो उसने
1: वैसे ही बने बने ऐसे सीख गया, बहुत कुछ सीखा है। और जब पुरन के बैठी ला हम लोग, तो कभी कभी हम लोग के भी कोक आतिफी तय कर लेना पकाने के लिए, तो वही पुराना खाना हम पकाए सबके खातिर, तो बहुत ये लोग के इतना खुश हो गए, तो सब पूछे भी कि कहाँ से ये सीखले है, तो देखो भी कि सीख लो वो कुछ आजी आजा से माए बाप से सीख लो, तो ओके अपने काम में लाओ, कर सकते हैं भी,
0: क्योंकि एक ना एक दिन जब गलती से एक चीज जो जिसमें कुछ ना करने से वक्त कहते हैं वक्त बगैर कुछ करे आगे बढ़ते जाता है, और एक न एक दिन दांत जब गिरने लगेगा, आंख से कम देखने लगेगे और पैरों जो अपने मनमानी करने लगेगा, तो पछतावा ना हो। तो ये तीन घंटियां जो जीवन में बचते रहते हैं, तो आपको जो है अपने

0: तो खूब मस्त। और कोई कोई कहते हैं कि भाई वह बना दुर्ग, ये कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो किंद्र ना द फुटबॉल तो बाद में जब मुसीबत पड़ते हैं बच्चों को पितृ दोष लगते हैं, और पितृ दोष ऐसा चीज है जो कितना दिन छोड़ेगा नहीं,
1: कई पीढ़ी तक जाए।
0: कहीं कहीं पर विवाह नहीं हो पा रहा, तो कहीं कहीं घर में बेटा बेटी और जाकर के दूसरा रास्ता पे चल जाता है, और तो ऐसा ऐसा चीज जो पीने लगते हैं, ये सब पितृ के और सेवा में कुछ ना कुछ पितृ ऋण ऋषि ऋण और देव ऋण का और जो बोया हुआ फल है। तो आप समय निकालिए, समय निकाल करके और इन दिनों में, और ना इन दिनों में सिर्फ मार्क फॉर योर ऑर्डर्स। शांता जी जो कोई और गीत को रखने वाले हैं, हम शीला जी अगर कुछ और कहने वाले हैं
2: जो यही मैं कह सकता हूँ कि देखो माता पिता के इतना प्यार देवो दुलार देवो, वही वही सबके कमी है, उनके बात सुनो क्या उन्हों मांगता है, तभी थोड़ा के बैठ के सुन ले वो तो उन लोग के भी तसल्ली हो जाते हैं। देखो हम लोग भी हम पुरानियन के साथ काम करती हूँ, तो जो उन लोग के तनी से प्यार दे दो दुलार दे दो तो उन लोग इतना खुश हो जाते हैं। उन लोग के खाली पूछ लो कैसे बांटो, क्या भोजन कर लो भोजन कि ना भोजन कर लो, कैसे बांटो, कैसे आप सो सुत लो बांटो, उतने सब हाँ खाली आंदा खाली वही उतने दे दे उनके तो भी ठीक है। जा करके एक बार हफ्ते में देख लो क्या कमी उनके घर में, कुछ किन के ले जा करके दे दो, उन भोजन पकाते हैं क्या कमी है, तार कर लो ज्यादा। हाँ ईसा तो कितना मोबाइल है, जब देखिला सब मोबाइल लेके आवे है ना, तो हम लोग सोचे इस सब तो यौंगरे से आगे निकल गए।
0: हाँ, और ना ओसन मोबाइल शीला जी, स्मार्टफोन स्मार्टफोन फेसबुक है और
2: इंस्टाग्राम
0: है,
2: सब कुछ है।
0: और
2: हमें समय ना लगे है उतना सब, ताकि उन लोग के जीवन के लिए अच्छा, उन लोग के और ज्यादा समय है ना,
0: बिल्कुल
2: बाकी ठीक है कि उतना है उन लोग के भी जो बहुत क्या उनमें, जब देखिला कि कैसे सब उनमें अपना वक्त निकालता है भी कुछ है ताक करके कि भगवान के कुछ उम्र होते हैं ना, कृष्ण के कुछ होते हैं, सभी कुछ ताक के सब अपन जो बहला लेता है।
0: सुंदर सा संदेश और शीला जी जो रखे आज। शांता जी छोटा सा म्यूजिक कुछ सुनाने वाले हो आप
1: जी?

0: सुंदर सा गीत जो शांता जी जो चुन करके रखे हुए कि बुढ़ापा किसने दिखाया शांता जी।
1: हाँ, और कहते हैं जो भजन, कहते कि भजन करो भरी जवानी में, भजन ये नहीं है कि आप माला जाप करो सिर्फ और जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, नहीं, भजन ये है कि सेवा करना, अपने एक दूसरे के सेवा करना, दो बोली बोलना प्रेम से, वो भी एक भजन है।
2: सही बात शांता जी।
1: हाँ, घर में खाना बनाओ पकाओ, वो भी एक भजन के तरीका है।
2: सही बात, खाना बनाओ भजन करते जाओ। हाँ। और वो खाना एक तरह से प्रसाद बन जाता है, और जितना आप भजन करोगे उतना स्वादिष्ट खाना बनेगा।
1: सही बात। कहते भी कहते हैं कि भजन करो भरी जनवानी में कि बुढ़ापा किसने देखा, कि कान से बहरे हो जाओगे कभी लुंगड़ा हो जाओगे, तो सोचो हाथ कत मा खदान ना ऐसा तरह
0: तो पैसा कमाते रह गए। अब देखा जाए शीला जी, हम औद्र तहस में जाओ तो बचपन में उन लोगों ने अपन लड़कन के पोस पाल के बड़का कर, बोले 10 लड़कन को पोस पाल के बड़का कर देते हैं एक माता, पर एक माता के सेवा करने के लिए 10 लड़कन के लड़कन भी 20-25 हो जावे चाहे, पर ना हो पावे। और उसमें वो शक्ति था कि देखा जाए कि हम लोग का कोई त्योहार, शांता जी कुछ कहने वाला था। शांता जी, लेडी स्पिरिट्स, आप सुना दो।
1: इसीलिए मेरी ख्याल से वृद्धा आश्रम बना है, क्योंकि बच्चे जो है तो उस आगे देखे, पीछे ना मांगे देखे। हमारे माँ बाप भी आगे देखते रहे, और आगे देखते देखते और जो पाछे वाला पीछे रह जाता है, और जो पीछे रह जाता है, जो उस जो हेल खुरपन जो है पीछे रह जाए, तो उस सब फर इंसान होए लगे है बस खेन अर्थ वे नेक्स्ट जवेत से ओगनी वात से मुतदून एंड एक डेंक दे डेंक एक या दैट द रीड इज दैट देयर न बयार द हाउस ऑर्डर न हाउस फॉर ऑर्डर से खमा dat ze bij elkaar kunnen komen, hun leed kunnen delen, hun ervaringen van vroeger kunnen delen, met elkaar kunnen praten, communiceren, zodat ze toch het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn.
3: Wo sahi ba jo bole hai Santa Didi ji, jo dekho jab un logan isai jo bimari bhi aayi gayi hai, dementia bolte hai na, कि इसलिए उन लोगन आते हैं ऐसे घर में, बुजुर्गों घर में रहने के लिए, कि घर पर बच्चे लोग सेवा ना कर पाएगा ऐसे माँ बाप के, कि कर सके है गा बाकी उनके स्पेशल सेवा चाहिए, कोई की चाहेगा एक बार फिर घर में धरे के, और लड़कन ईसाई लड़कन सब कोई काम करे है गा, तो जब सब कोई काम करे है गा ओके भी घर में छोड़ के जाइए तो अकेले भी दिन भर अकेले रहे, तो इसलिए वो घर जो है बना है सबके लिए कि जा करके सब भी उमन धर सकते, बाकी धर सकते हैं कहे खतिर ना, कोई बोले हमें तो शर्म लगे है अपने माए बाप के ले जा करके माँ धरा, हम बोली नहीं ये शर्म के बात नहीं है, आप घर पर उनके सेवा नहीं कर पाते है गा, जो दिमाग से जो तनिक कम हो गया है ना, जो चाहिए उन्हें ही दे पाएगा, बाकी शर्म कब आएगा जब अपने माँ बाप के लिए जा करके वहाँ धर दियो इसन घर में एक वृक्ष आश्रम में जो हम लोग के हैगा, जब ना जाइयो उनके देखे तब तो वो शर्म के बात है, बाकी जो धरे हैगा वो शर्म ना है, उन लोगों का मजबूरी है।
1: मैं से दीदार वैर कर
3: जैसे आपने बोला,
1: हाँ
3: जैसे आपने बोला है कि अपने लिफ्टेट खनोत से है अपने अपने जो उम्र के बराबर ही हैगा उनके साथ वो बैठ करके बात कर सकते हैगा, वो सही बाजोन बोले है।
1: हाँ।
3: और वो ठीक हैगा, घर पर बैठिए बच्चों के साथ भी सब कुछ ना शेयर कर पाएगा, और वहाँ जो है तो अपने सब कुछ आता है मुड़ी में ना बात करने के लिए।
1: हाँ। और बहुत ज्यादा घर पे रहोगे एक बार जो दुई दफे तीन दफे हराल करे तब बच्चे बोलेगा चुप रहो मान, एक भाव बतिया बोले
0: अरे शांता जी हिसाब से क्यों ना न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं और कमर्शियल की ओर, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं,
3: तो वैसे होएगा तो बोलते कि वो उन लोग के कैनस नहीं होएगा,
1: कैनस ना रहता
3: कैसे उन ना पहले हम लोगन ना जाने थे दमयंती का है मैं अब जब हम लोगन जान के लिए अब तो ढेर प्रचार बा तो जब ऐसे होवे कोई के तो बच्चन के चाहिए गूगल करके देखे कि क्यों मेरे बाप माता पिता इतना हैर हाल करते क्यों ऐसे बोलता है क्यों तो उन जब देख लेगा ना तो उन लोगन दूसरा व्यवहार दूसरे का व्यवहार करेगा माता पिता से
1: जी। तो यहाँ तक था ये प्रोग्राम इस वक्त के लिए।
4: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
5: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
6: इनगेस्क्रेवन एंड गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फ्रॉम द ऑर्डर अल्गमीने रेक्सप्रैक्टिक हियरअंडर फॉलो बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टरवेल सिविले जाकें बेस्टुर्सरेक्ट एंड स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एंड फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासीजाकें ओमगंगसरेगलिंगें ऑउडरशिप एंड एरकेनिंग जेउगरेक्ट मेट फॉलगेंडे गेबिडन जेउगबेस्केर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
7: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
8: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert, Jubinau Teliale. Dag 1, Zoudhaal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
9: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Frank van der Klucht. Minister Heijne waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijne is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf van de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beide zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarden tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: सुनवलो कार्यक्रम जो आगे बढ़ाना है और कार्यक्रम जो आगे बढ़ाया जाए, तो अनुराधा जी जो भारत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपना संदेश रखने वाला है कि जीवन में अकेलापन, जीवन में अकेलापन के अंतर्गत में अनुराधा जी क्या सुनाने वाले हैं, तो हमें अनुराधा जी आपको हम सेंडिंग में ला रहे हैं, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आप अपना संदेश को सुना सकते हैं।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और आपका जीवन स्वस्थ चल रहा होगा, आप अच्छा भोजन खाते होंगे और अपने परिवार जनों के साथ वक्त व्यतीत करते होंगे। देखिए, जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार बनाकर रखें, अपने परिवार वालों से संबंध अच्छे रखें, सबसे प्रेम से और रहें और अच्छे बोले एक दूसरे से। देखिए, हमारा सभी का जीवन एक ऐसा समय होता है जिसमें हमारे पास जो जीवन में हमें नहीं पता कितना लंबा हो गया, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो जितना भी जीवन हमारे पास हम जीते हैं, हमें होना चाहिए कि हम उसे भरपूर अच्छी तरह खुश होकर बिताएं। संजय जी, आज देखिए, हर इंसान के पास, मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग किस्म के तरीके से हम व्यतीत करते हैं। देखिए, हर इंसान, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। भले ही हम सब मनुष्य हैं, पर हम सब अपना जीवन अलग अलग ढंग से हम बिताते हैं। देखिए, हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके होते हैं और परिवार में अलग अलग लोग होते हैं। तो हर इंसान का जीवन हर एक दूसरे से अलग होता है। भले ही हर इंसान का परिवार होता है, उसे जीवन में रहने के लिए पैसे कमाने होते हैं, उसको अपने हर चीज़ करनी होती है, पैसे कमा कर अपना पेट भी भरना है, तो काम भी करना है और परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बच्चे सब होते हैं। पर देखिए, सब परिवार होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक समय आता है कि हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और या तो उनकी शादी हो गई है या वो कहीं पर बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग रह रहे हैं या साथ भी रह रहे हैं, आप अपने हम सफ़र के साथ जीवन बिता रहे हैं या कभी कभी हमारा हम सफ़र जो होता है वो हमें बीच राह में अकेले भी छोड़ कर चल जाते हैं, तो हम अकेले रह जाते हैं। हमारे माता पिता जब तक साथ होते हैं तो है, नहीं तो हम अकेले भी अपना जीवन हमें व्यतीत करना पड़ता है। बच्चे भी हमें एक समय पर सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत स्वाभाविक है कि हम बहुत बार हमें एक अकेलापन सा लगने लगता है कि जीवन में हम बड़ा एक अकेलापन ऐसे लगता है कि हम जीवन में इस आए हैं, हम चाहते हैं हमको सब प्यार करें, पर कभी कभी ऐसा समय आता है कि हर इंसान को अकेलापन लगता है। ये जो आज मैं ऐसी इस पर बात करना चाहूँगी, इस विषय पर, क्योंकि ये विषय जो ऐसा है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है अपने जीवन में और वो ये बातें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम आपस में एक दूसरे से लोगों से बात भी नहीं करते हैं, भले ही आप अपने दोस्तों के साथ हों, पर आप हर से हंसी खुशी बात कर रहे हैं, पर जब आप घर वापस आते हैं तो आपको एक अकेलापन महसूस होता है। और ये बहुत बार ये इंसान हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से ये बात नहीं करते और अंदर ही अंदर इसको हम अंदर महसूस करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर काफ़ी चर्चा, मतलब जो चर्चित ये विषय इसलिए है क्योंकि ये आजकल का आजकल हर इंसान इससे जूझ रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। और संजय जी आगे बढ़ते हैं तो एक गीत हो जाए, उसके बाद मैं और आगे बढ़ूंगी।
0: जरूर जरूर अनुराधा जी, एक गीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। नहीं शांता जी, क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंटल थोड़ा से चला देते, क्योंकि संदेश ज्यादा है। हाँ, समय के कमताई और काम के दबाव, तो थोड़ा से गीत को यानी इंस्ट्रूमेंटल चला देते हैं अनुराधा जी।

0: आगे बात लेकर चलते हैं आगे। हम यहाँ अकेले हैं, कभी कभी जीवन के किसी शांत क्षण में जब चारों ओर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, तब भीतर से हमें कई बार एक धीमी सी आवाज हमारे अंदर उठती है और वो कहती है हम यहाँ अकेले हैं। तो ये जो अकेलापन लोगों के ना होने से नहीं आता, ये नहीं है कि हमें अकेलापन तभी होता है जब हम अकेले हैं। कई बार घर में घर भरा होता है परिवारजनों से, घर में बच्चे हैं, आपका आपके परिवार में आपकी पति पत्नी आप दोनों में से जो भी हो है मौजूद हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते मौजूद होते हैं, हाँ। पर कितना भी कुछ हो जाता है, कितने लोग हैं घर में, तब भी आपको आप कहते हैं मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो और मैं मेरे को अकेलापन सा लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है, देखिए बहुत बार होता है, ऐसा नहीं है जैसे हम मैंने कहा कि आप अकेले रह रहे हो, ऐसा होता है लोग अकेले रहते हैं घरों में अकेले रहते हैं, तब तो हम मान सकते हैं कि आप अकेले हैं। पर अकेला होना अकेलापन ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आप अकेले रहकर भी खुश हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत खुश हो सकते हैं और पूरा पूर्ण महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर अकेलापन वो है जब आप लोगों से भरपूर हैं, आपके आसपास लोग हैं, तब भी आपके मन में जो विचार होता है या आपको जो आपकी जो जो आपको फील होता है, जो आपके मन में चल रहा होता है कि मुझे एक अकेलापन सा महसूस होता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको फोन पर संदेश भी आते रहते हैं, ये नहीं कि लोग आपसे संपर्क नहीं करते, लोग आपको आपसे बातें भी करते हैं, फोन मिलाते हैं, आप लोगों से मिल भी रहे हैं और लोग आपके हालचाल भी पूछते रहते हैं, फिर भी मन के किसी कोने में एक खाली जगह बनी रहती है, एक ऐसी जगह जहां हमारी जैसे कहते हैं ना अनकही बातें, हमारे डर, हमारी थकान, हमारी पीड़ा चुपचाप बैठी रहती है। तो वो ऐसी जगह होती है जैसे जो वो हमारे अंदर ही दिल के अंदर रहती है, हम किसी को दिखाते नहीं हैं, ना ही हम उसके बारे में किसी से हम बात करते हैं, और वो ऐसी पीड़ा होती है अंदर इंसान के कि वो उससे बस उसको अजीब सा वह महसूस करता है, जो जो इससे जूझ रहा होता है उसी को पता है कि वो उसको वो अकेलापन लग रहा है। तो ये एक बहुत जो कहते हैं ना, ये जो परिस्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, हो सकता है कि आपके घर में आपके परिवार में कोई ऐसी स्थिति है जिससे आपको ये लगता है कि भाई दुख के आप दुख आप कोई पीड़ा हो रखी, आपको दुख से आपको गुजरना पड़ा हो, तो इंसान को थोड़ा सा अकेलापन लगता है। पर हम ये जो अकेलेपन की बात कर रहे हैं वो ऐसा अकेलापन है जब आपके आसपास सब परिवार वाले भी होते हैं, आपके दोस्त जन भी हैं, आप दफ्तर भी जा रहे हैं या आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी आपको एक अंदर सा खोखलापन आपके अंदर महसूस होता है। और एक आपको लगता है कि जैसे जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, पर ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है, हम वहां हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हम बहुत बार दुख महसूस करते हैं। और ये जो परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, ये हम कभी कभी हम किसी से बात भी नहीं करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कभी कभी कि हम ऐसा हमें महसूस हो रहा है। तो ये बहुत एक गहरी समस्या है जिसके बारे में बहुत जरूरी है कि हम उस समस्या को हम उसका समाधान ढूंढे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करें, चर्चा करें कि ये अकेलापन क्या है। और क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इंसान को हम देखिए, हम हर इंसान का जीवन अलग होता है, पर हमें ये अकेलापन जो है वो हमें ऐसे में परिस्थिति से नहीं गुजरना चाहिए जिसमें हम इसमें हम फंस कर रह जाएं, क्योंकि ये बड़ा दुख पहुंचाने वाली परिस्थिति होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें और अच्छा महसूस करें। तो ये आगे मैं बात करती हूँ इसके बारे में। संजय जी, एक गीत हो जाए अच्छा सा, जिससे कि जिनको ये अकेलेपन के से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा पल भर की खुशी मिल जाए। चलिए आगे एक गीत हो जाए, फिर आगे बात करते हैं।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, हम इंस्ट्रूमेंटल की ओर बढ़ रहे हैं और इंस्ट्रूमेंटल जो हम चलाने वाले हैं, क्योंकि

0: तो अभी हम सब सुने जो अनुराधा जी अभी और भी संदेश रखने वाले हैं, पर शीला जी इस पे अब देखा जाए कि हमारे औद्र के लिए काफी चीजें जो बन चुके हैं ना, अपंग ढेर सारे हैं जो यानी कि जब मन करे तो रोज ही जा सकता है कहीं ना कहीं।
1: वो सही बात, इसलिए यहाँ पर जो है इसे होलैंड में इसे बहुत कुछ खोल गया है ना, कि जहाँ जा करके हम लोग के बुजुर्गों लोग पुरानियन जा करके अपना दिन बिता सकते हैं। जैसे कि या जैसे ब्यूर्थ हाउस पहले रहा ना, पहले ब्यूर्थ हाउस अब वहाँ पर बन गया कि सत्संग होवे लगल बा, कि पुरानियन आवे वहाँ बैठे, योगा है जाने के लिए, बहुत कुछ तरीका है कि जा करके अपना दिन सब बिता सकते हैं। और इनमें बच्चों के भी चाहिएगा उन लोग के सपोर्ट करे के कि माता पिता लोग निकसे घर से तनी से ले जा करके उन लोगन पहुँचा देवे, माता पिता के ले लेवे। इसे तो टैक्सी कितना यहाँ पर कितना सहारा हो गया टैक्सी के ना, कि अपना ले सकते हैं वो ला करके घर पर तो के है ले करके ले जाएगा, जहाँ तो के काम हैगा वहाँ उतारेगा, वहाँ से उतार करके ला कर फिर घर पर पहुँचा देता है। कि इनमें यही मेरा संदेश है कि निकलो माता पिताओ, जाओ बाहर, बाहर देखो कि अपना दिन बिताओ, अपना लोगन अपना वक्त जो हैगा।

0: गया समय बिताने के लिए कि अकेलापन तनी से दूर होवे कि महसूस ना होवे कि आप अकेलो बाटो।
1: तो दोस्तों सुनने वालों, और जिस प्रकार से शीला जी कहते हैं और अनुराधा जी जो दूसरा साइड एकदम भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो अनुराधा जी और भी संदेश हम लोग के लिए रखने वाले हैं। आप अपना संदेश को रख सकते हैं।
2: और समझा जाए कि ऐसे अकेलेपन में ये क्या अकेलापन क्या है, ये अकेलापन किसको है? देखिए, जीवन भर हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। किसी के लिए माता पिता बनते हैं, किसी के लिए जीवन साथी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए सहारा। तो हम सबकी जो हम अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो हर इंसान की, जैसे कहते हैं ना कि हर जीवन में उसके अलग अलग परिस्थितियां हैं और उसके अलग अलग रिश्ते हैं जो सबके साथ उसको निभाना पड़ता है। हम सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हम सभी रखते हैं और सबके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम सहारा बने, हमने दूसरों की लिए हम वहाँ थे, जब हमारे माता पिता थे हम उनके अगर बच्चे थे तो हमने उनको जरूरत पड़ी हमने उनको सहारा दिया, हमारे बच्चे थे अगर हम उनके माँ बाप हैं तो हमने बच्चों को जब उनको कुछ सहारे की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी, उनके सहारा जब, या हम किसी के पति हैं या पत्नी हैं एक दूसरे की हमने जब करा। तो हर जगह जब जिसकी जैसी आवश्यकता थी वहाँ हमने दूसरे को सहारा दिया, चाहे भले ही वो दोस्त है घर में किसी को भी। तो हमने हमेशा सहारा तो बने, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें खुद स्वयं किसी सहारे की आवश्यकता होती है तब हमारे पास केवल हमारी खामोशी रह जाती है। तो ऐसा भी होता है कि जब हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हमने जीवन भर दूसरों के लिए करा, आज ऐसा समय आ गया कि हमें खुद किसी के सहारे की जरूरत है। तो ऐसे में जब ऐसा एहसास होता है तब हमें बड़ा अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि हम वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं किसी को कि भाई आज ऐसा भी दिन आ गया है कि आज हमारे मन में ऐसा भी संदेह है, ऐसा भी हमारा मन में चल रहा है विचार कि आज मुझे एक अकेलापन लग रहा है, मेरे को एक सहारे की जरूरत है। और ये बड़ा ये ऐसा नहीं कि ये आप ही एक हैं जिसके साथ है, ये अनेकों के साथ ऐसी स्थिति आती है। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। आपको ये लगता है ये होगी? नहीं, ये नहीं है। हर इंसान को लगता है कि भाई अगर हमारे पास खाने को अच्छा है, हमारे पास कपड़े अच्छे पहनने को हैं और हमारे पास मकान है तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है और ये बस हम बहुत खुश हैं। पर ये हम गलत सोचते हैं। उसकी तो ये नहीं कि हमें खाली रोटी कप

0: बड़ा मकान ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है क्या होती है, समझा जाना, जहां लोग हमें समझें, कोई दूसरा इंसान हमें समझे। ये जो बाहरी चीज होती ना, खाना पीना और घर होना, पर सब कुछ है, कपड़ा सब है, आपका जीवन बड़ा, आपका बहुत अच्छा, आपके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, पर ये कोई ये नहीं समझता कि इस सब का कोई अर्थ नहीं है अगर आपको कोई समझने वाला ना हो। तो सबसे बड़ी अपेक्षा हर मनुष्य की है कोई उसको समझने वाला हो। तो ये हर इंसान की सबसे बड़ी जो आवश्यकता उसी को कहते हैं कि कोई उसको समझ सके, उसकी दिल की गहराइयों को समझ सके, उसकी दिल की बात को समझ सके। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके। तो ऐसी ही इंसान को हम तलाशते रहते हैं और हमें हमेशा लगता है कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ, जब जो हमें नहीं समझ पाता है तब हम अकेलापन का हमें एहसास होने लगता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी गहरी सच्चाई है कि आप कितने भी धनी हो, पैसा हो, सब कुछ हो, तो कोई जरूरी नहीं आप बहुत खुश हैं, उस इंसान को भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और भले ही एक इंसान गरीब हो, हम सोचें भाई गरीब है उसको अपने दुख है, पर इसमें गरीब और अमीर से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान अकेलेपन का एहसास उसको वो कभी कभी कभी ना कभी जीवन में उसको वो इससे गुजर सकता है। तो संजय जी, आगे बात बढ़ाते हैं और बात करेंगे इस विषय पर, क्यों ना एक और सुंदर सा आप अपने पिटारे से एक और गीत सुनाएं हमें।
1: अनुराधा जी, मैं तो पिटारा वाला तो शांता जी है और शांता जी पिटारा में भर के लाए हैं ढेर सारे गीतों, पर कहने के तात्पर्य ये है, हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबे है तो, और पनीर के पीछे बैठ गए हैं शीला जी, तो शीला जी क्या म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल्स थोड़ा से चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

पहले कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे दुख को पढ़ सके, उसकी चुप्पी में छिपी पुकार को सुन सके, कोई ऐसा जो वह यह ना पूछे कि तुम्हारी क्या समस्या है, बल्कि केवल इतना उससे प्यार से ये कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए, यही जो साथ है ना, इसी साथ हर इंसान यही साथ चाहता है एक साथी से, या जो भी उसके परिवार में है जो उसको समझ सके और उसे कह सके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया में सबसे गहरा दुख अक्सर वह नहीं होता जो दिखाई देता है, सबसे गहरा दुख वह होता है जिससे होता है जो दिखाई देता है। मतलब हम सोचते ना कि भाई किसी को कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ है, तभी उसको दुख है। नहीं, वो दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना जो अंदरूनी, जो उसके अंदर जो दुख होता है वो सबसे बड़ी, वो दुख होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता है, जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते हैं, तो वही इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है। और यही जो दुख होता है ना, जिसको हम अकेलापन करते हैं, यही वो जो अकेलापन की स्थिति होती है, उसी में वो सबसे इंसान दुख से पीड़ित होता है, अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा इंसान का जो होता है ना, वो दुख होता है, और वो अकेले ही उसको उसको झेल रहा होता है, कि उसको ये नहीं पता कि भाई उसको बस एक इंसान की जरूरत है जो उसको समझ सके। और वह क्या होता है कि ऐसी जो बात होती है ना, हम किसी से कह नहीं पाते हैं बहुत बार, वह दर्द जो आंखों तक आकर लौट जाता है, वह आंसू जो किसी के सामने बह नहीं पाते, वह उम्मीद जो धीरे धीरे टूटती रहती है लेकिन जिसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। शायद इसी कारण हम सब कहीं ना कहीं अकेले हैं। तो यही जो जो सबसे बड़ा जो इंसान का जो अकेलापन आता है ना, वो इसी से आता है, वो कभी जो वो बोल नहीं सकता किसी से। तो ये बहुत बड़ा हर इंसान के जीवन में आता है कहीं ना कभी, कभी ना कभी। हम अपने संघर्षों के साथ अकेले हैं, अपनी यादों के साथ अकेले हैं, अपने डर और अपने सपनों के साथ भी अकेले हैं। देखिए, इस सत्य का एक दूसरा पक्ष भी है। तो जहां पर हम सोचते हैं कि भाई हम अकेले हैं हर चीज में, पर एक अलग भी उसका जब है, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, अगर हम ध्यान से देखें आसपास, चाहे हमारे परिवार वाले हो, हमारे दोस्त जन हो, हमारे सहकर्मी, हमारे जहां आप काम करते हो, दुनिया में हर कोई, कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई बोझ लिए चल रहा है, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई अधूरी कहानी है, कोई अनकहा दुख है। देखिए, कोई ऐसी कमी है जिसे वह शब्द नहीं दे पाता है। तो तब समझ में आता है कि हमारा अकेलापन केवल हमारा नहीं है, यह मनुष्य होने की साझा नियति है। ये हर मनुष्य को कभी ना कभी ये इस दुविधा से, इस परिस्थिति से के से गुजरना पड़ता है। तो चलें आगे और भी हम बात करेंगे, और आशा करते हैं कि देखिए अकेलापन है, पर इससे हम उभर कर क्या हम निकल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि बस हम अकेले, अगर हमें ये महसूस होता अकेलापन है, क्या हम जीवन भर ऐसे ही हमें रहना पड़ेगा? क्या आगे कोई इसमें कोई हम कुछ कर सकते हैं, हम इसमें इससे निकल सकते हैं?
चलिए पता लगाएंगे आगे, उससे पहले क्यों ना एक सुंदर सा एक और गीत हो जाए। संजय जी आइए एक गीत सुना जाए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं।

0: अकेलेपन के बारे में। तो देखिए, हम यही बात कर रहे थे कि हम हर इंसान एक साथी की खोज में है, जो उसको उसको लगे कि जो उसे समझ सके। हम सब अपने अपने दुखों के साथ चलते हुए एक दूसरे की तलाश में हैं। हम सब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं होते हैं जो हमारे भीतर तक पहुंच सके। और देखिए, जीवन भी ना शायद इसी खोज का नाम है। जीवन भर हमारा बीत जाता है और ये हमारा नजरिया भी होता है बहुत बार कि कभी कभी जिस चीज को हम खोज रहे होते हैं वो हमारे सामने है, पर हम उसको इतना उसका हम उसका महत्व नहीं समझते हैं, उस इंसान के बारे उसके बारे में या उस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं। और हम ऐसी ही कुछ अपना तलाश कर रहे होते हैं या किसी की चीज खोज रहे होते हैं जिससे कि बस हमारा अकेलापन दूर हो जाए। किसी ऐसे हाथ की खोज में हम होते हैं जो कठिन समय में हमारा हाथ थाम ले, तो हमें ये लगता है कि भाई हम ऐसा हमें भाई कोई समझने वाला हो या हमारा हाथ थाम ले ऐसी ऐसा व्यक्ति जिससे कि हमारा जीवन में अकेलापन जो हम हमें हम जिससे गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाए। किसी ऐसी आवाज की खोज में होते हैं जो टूटते हुए मन को यह विश्वास दिला सके कि सब ठीक हो जाएगा। तो हर इंसान, हर मनुष्य का हृदय क्या होता है ना, वो चाहता है प्यार, चाहता है प्रेम, चाहता है। तो किसी हम ऐसे एहसास की खोज में लगे रहते हैं जहां हमें अपने आंसू छुपाने ना पड़े। जिस इंसान के साथ हम ऐसा लगता है कि जहां हमें अपना पंसा लगे, हमें किसी के साथ ऐसा अपनापन लगे कि हम अपने दुख की बात, हम अपना सब कुछ इस इंसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ हम बांट सके। और जब हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा अकेलापन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हर मनुष्य जो है ना वो बहुत बार, देखिए ऐसी जीवन में आप जब आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपकी जीवन शादीशुदा जिंदगी भी बहुत अच्छी कट रही हो सकती है, आप खुश होते हैं तब आपको ऐसा साथी मिला है जहाँ जो आपको समझता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि जब हम किसी के साथ हैं पर वो हमें समझ नहीं सकता है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है। पर कभी कभी ये भी हमें सोचना चाहिए, क्या आपको लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, पर क्या वो, देखिए वही बात, दूसरा आपका जो साथी है उसको भी ये लग सकता है कि ये इंसान हमसे दूर रहता है, हमें समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि जो आपके जीवन में आपका साथी हो आप उसको भी समझने की कोशिश करें। और जहां आप अपना हाथ बढ़ाएंगे दूसरे को समझने में, तो दूसरा इंसान भी अपना हाथ आपको समझने में की कोशिश में करेगा। और ऐसे ही ये बहुत बार होता है कि हम अपनी जो मानसिक रूप से हम जब ऐसे सोचने लगते हैं कि हमें कोई नहीं समझता, हमारा कोई हमारा दुख सुख नहीं समझता है, तो हम वो अकेलापन की हमें अनुभूति होने लगती है। पर आप इसी, देखिए हर चीज़ ये तो हमारे दिमाग से होती है, इसी दिमाग को अगर हम ये कहें, आप अगर नकारात्मक ना सोचें और उस सोच को हम बदल कर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग करें कि जो हमारे साथ परिवार जने हैं हम उनसे थोड़ा खुलकर बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, अपने बच्चों के साथ हम अपना थोड़ा समय दें, अपने माता पिता हैं आपके, आपके जो जो पति पत्नी आपस में एक दूसरे से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो दोस्त हैं आपके, हो सकता है आप अकेले रहें, आप अकेला जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो अकेला जीवन व्यतीत करने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, अकेलापन का महसूस करें, आप लोगों से दोस्ती करें, अपने अपने जैसे लोगों से जो आपको लगता है जो आपकी बात समझ सकते हैं, और जो आपको आप जो आपके दुखों के दुख के समय आपको सहारा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आप मिले जुले हैं, आपस में परिवार में भाई बहन हो, रिश्तेदार हैं, उन सब से एक एक अच्छा सा एक माहौल बनाएं, जिससे कि जहां पर आप हंस उनके साथ दो पल बिताएं, पर हंसता हुआ जीवन, जैसे कहते हैं ना, खुश मिजाज रहकर जीवन बिताएं, तो काफी हद तक आप जब अपने दिल की बात भी कोशिश करेंगे किसी को व्यक्त करने की, तो आपको आपका मन हल्का हो लगेगा, और काफी हद तक आपको अकेलापन का की कमी आपको महसूस नहीं होगी। और ये हमें भगवान, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेलापन भी महसूस करते हैं, तो हमें भगवान पूजा पाठ में सहारा लेना चाहिए है, आप ईश्वर को याद करें, अपनी सोच को सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंसान का जीवन को बदल सकती है। तो ये सब अगर आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिले जुले, अपने मन की बात अंदर दिल में ना दबाएं, अंदर ही अंदर उसको ना, जितना भी कठिन क्यों ना हो, आप किसी से बात करें, कभी बहुत आपको किसी से नहीं कर सकते तो आप कोई डॉक्टर या काउंसलर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, पर बात जरूर करें, अपने दिल की बात दूसरे को जरूर बताएं, इससे आपका आधा जो अंदर दिल की बात है किसी को व्यक्त करने से आपका दिल हल्का होएगा, और ये एक जो अकेलापन का जो जो होता है, आप बाहर घूमें फिरें, लोगों से मिलें, जो आपको पसंद है, आपको क्या शौक है, बाहर खाएं पिए, घूमें फिरें, जो आपके शौक हैं उनको आप पूरा करिए, जो उसमें किसी को संगीत का, किसी को नृत्य का, डांस का, पेंटिंग का, बाजा बजाने का, गाना गाने का, जो आपके शौक हैं, किसी को लिखने का शौक है, और किसी को पिक्चर देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जो शौक है आप पूरा करिए, और जब जो शौक पूरा करेंगे तो उसमें आपको एक खुशी का एहसास होगा। तो ये अकेलापन की जो आपको जो आपका जो विचार है, इसमें ये बहुत सहायता करेगा कि आप आपकी सोच बदलने में आपको सहारा देगा, और आपकी सकारात्मक सोच जहाँ होने लगेगी तो आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगेगी, और खुश मिजाज आप रहने लगेंगे, आपको एक खुशी महसूस होगी। तो ये ये जो एक तरीका है, इससे इंसान अपने अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर सकता है, और ये कोशिश में रह सकता है कि अगर हम चाहें तो इससे हमें गुजरना ना पड़े। हर इंसान चाहेगा कि ऐसी स्थिति, अकेलेपन से हमें स्थिति से गुजरना पड़े ना पड़े, तो यह मुमकिन है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जीवन से अपनी नकारात्मक सोच को, नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं, और थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना अपने जीवन में लाएं, तो हर चीज आप देखेंगे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाएगा, हर खुशी का आपको एहसास होने लगेगा। और मैं चाहूंगी आप सब ये कोशिश जरूर करें, खुश रहें और सबको आसपास भी सबको खुश रखें, यही मेरी कामना है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ मैं ये आज का ये अंत करना चाहूंगी विषय। और संजय जी चलिए एक बड़ा प्यारा सा सुंदर से एक और गीत हो जाए।
1: अनुराधा जी बड़ा सुंदर संदेश आपने

0: सुनने वालों, आज के विषय जो रखा गया और पितृपक्ष अंतर्गत जो संदेश को रखा गया, जिसमें काफी संदेश जो अनुराधा जी ने रखे ना शीला जी,
1: जी
0: तो इस संदेश जो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें हम लोग पुरखों और अपने औदर को अंतर्गत में बातचीत किया, और यही आशा लेकर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इसे लेकर के और अपने औदरों के साथ कुछ सुनाने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ
1: इसका हाँ, वो जीवन में उतारना है उनको, है तनी से अपने औदर की खातिर कुछ ये दिन बिताना है भी, ले जाओ उनको बाहर और देखना कि अगर आसपास में कहीं नगिश में भी कुछ हो कि जहाँ अपन दिन बिता सकते हैं, इतना हम लोग के दाख एक्टिविटी तो बा खुल गया है, चारों बगल खुलल है गा है, जहाँ जहाँ उनके अच्छा लगे वहाँ ले जा करके जरूर उनके एक दिन बिता करके वो चला आवे अपना।
0: दोस्तों, तो समय पे हमें ध्यान देते हुए हम वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं, और वो गीत का बोल जो लागी छूटे ना है, तो लागी छूटे ना के ओर हम बढ़ने से पहले ये क्या कहते हैं,

0: सामान रे।
1: जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह आपकी मेहरबानी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: Vertrouw op je weg. Vertrouw op je weg en blijf altijd vooruit gaan. Wat kijkt hij? Ki chalne ka naam zindagi hai bhaiya. Chalte raho, aage kadam badhate raho. Baithe raho te dimag dhaurate raho. Par aage kadam badhate raho. यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।
1: अच्छा, यहाँ से भी यही तक मेरे प्रोग्राम भी था सबके साथ। धन्यवाद हो संजय पंडित संजय जी, शांता दीदी, बबली दीदी, भाभी भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। यही मैं कहूँगा आपके आप लोग से कि शुभ रात्रि होवे, मेरा प्यार भरा नमस्कार होवे आप लोग के, और फिर जरूर अगले बार मिलेगा।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए शांता खेमाई जी और श्रीमती शीला जी, बबली आसरा जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय, और भारत से अनुराधा चंद्र जी जो अपना संदेश को रखे, यही आशा लेकर के कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुंचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार।

जीवन एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन यदि बाएं भाग वाला शकुन, बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं। जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखड़ पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घुड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे मिलेंगे।

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियाँ या मल के ढेर पर, शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दे तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंक को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संज्ञा बाई, पुरुष संज्ञा दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, छुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई और शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई और गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीखंड, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीछ, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीछ और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाई और होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का भय होता है।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जो जानवर बिल में रहते हैं और जो जिनका नाम लेना और सुनना भी शुभ समझा जाता है और उनको देखना भी शुभ समझा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। दिन रात में विचरते शकुन, जो दिन में विचरते हैं यानी कि जो चीज़ें हमें दिन में दिखाई देती हैं, बगुला, बंजुल, कौआ, चकवाक, कोयल, मोर, गिद्ध, पौधकी, वानर, कपीजल, तोता, शिखरा, बटेर, गधा, ये सब जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, उनके नाम हैं सुनने वालों। और जो रात में विचरते हैं, जो रात में दिखाई देते हैं, वो है पेचक, घुघू, घुघू मीन्स उल्लू, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश। जो दिन रात्रि में विचरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प, कोयल, सारवत, हंस और सुअर। विभिन्न दिशाओं में मिलना शुभ। पूर्व में घोड़ा सफ़ेद वस्तु, दक्षिण में मांस शव, पश्चिम में कन्या और दरी, उत्तर में ब्राह्मण, साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है, और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है, कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है, तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए, वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

हर दिल को खुशी से भरपूर कर देना, बस इतनी रहमत मेरे हजूर कर देना। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों, बनई न बर्तन बानी बर्ता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चापू बाम देसी ले, मनहु सकल मगल कही दे। तो जब ये शगुन हुआ तो उनको नीलकंठ गायें दिखाई दी रास्ते में। सुनने वालों, दहिन काग सुख सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। तो इसका उनको रास्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकूल वह त्रिविधि बिहारी। इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सघर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेर दर्शु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख सीसु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजनु दीनी दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशी, क्षेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की तो उनमें भी उसमें तब उनको क्षेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सुत्रु देखी, सन्मुख आयुधि अरुमीना, फिर उनको

एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वी प्रवीणा, फिर हाथ और दो दिखाई दिए सुनने वालों।

रामचंद्र जी के रासलीला के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का रासलीला होने वाला था तब काफ़ी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा। जब रासलीला हुआ बजे घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी। राम सिए तनु शकुन जमाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक स प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि। भय बहुत दिन अति बकेसरी, शकुन प्रीत भेंटे प्रिय केरी। करदूषण के लिए अंगहीन सूपनखा अमंगल की सूचक थी।

तेरी, ताहम वासम धनु मनु उमेरी, यानी कि पंचवटी में शुभ खादी आगे कर लीती, अशुभ रूप ज्योति नशा हीनी, कि रूपनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था सुनने वालों। राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए, जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा, सोच ही सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक शब्द करने लगते हैं, कुत्ते रोने लगते हैं, उल्लू पक्षी भयानक बोली बोलते हैं।

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठ ही गृद उड़ ही शिरन पर, भयाऊ काल वश का छू न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन हुआ। जब अति भयउ विहर अर्धाहु, फरेक्यु वाम नैन अरु बाहु, शकुन विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ।

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख वह भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकहि बरहि बार, जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करन विचार।

छेक विचार। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसका उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महाअशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाएं छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी।

शराब संघनी, पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबीन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। आसान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम्भ और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइए, छींकत खाइए, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना चाहिए।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाईं ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विधन होता है। व्यवसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

तो दोस्तों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1926 तक कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं यारो कि हैप टू नास्ट आलते लीफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम कुछ दिनों से आप सुनते आ रहे हैं महान संगीतकार यार 50s 60s 70s द ग्रेट ग्रेट ग्रेट मास्टर मदन मोहन जी के कुछ नगमे आप सुनेंगे उसके बारे में कुछ बातें भी आप सुनेंगे और उसके बाद सिर्फ नगमे सुनेंगे आप जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं भी कुछ शेर शायरी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना यारो मजे लेते रहना जहाँ पर भी हो जिस हाल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को हिल फील लेस्टर प्लेजियर

गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तुम्हारे प्यारे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्रिय प्रिय सुनने वालों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में। आप सुनेंगे एक अति सुंदर बयान, ऐड फिल्म जहां तुम वहां हम, आकाशवाणी में ये नगमा पेश किया गया। सुपरहिट सॉन्ग कैसे कटेगी जिंदगी और वो भी तेरे बगैर, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय माएस्ट्रो मदन मोहन रफी साहब जी के मधुर आवाज में।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला बयान सुनाया आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन जी। अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब फ्रॉम द मूवी शराबी 1964 राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ सुपरहिट सॉन्ग कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर आएगा। रवि साहब जी के मधुर आवाज में आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

मुझको बस आवारा समझा जितने मेरा

Beautiful song, a wonderful song from the movie Sharabi 1964, composed by Maestro Madan Mohan Alfaze Te Rajinder Krishan Ka aur Awaaz Suru Ka Badsha Ravi Saab Ji Ka. श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नगमे मदन साहब ने रफ़ी साहब और लता जी के लिए कंपोज किया है. लता जी को तो वो अपना बहन मानता था और राखी के दिन ये दोनों भाई बहन बहुत ही शान और शौकत के साथ रक्षाबंधन मिल के मनाते थे. तो अब आ रही है आप श्रोताओं की खिदमत में सुरोका देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे आपकी नजरों ने समझा प्यार की काबिल मुझे. ऐड फिल्म अनपढ़ निकटी ट्विन सिस्टर राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

पी अनपढ़ आपकी नजरों ने समझा, सुरोका देवी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। राजा मेहदी अली खां के अल्फाजे कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर बड़का भैया श्री मदन मोहन जी। एक और अति सुंदर बयान है आप श्रोताओं की सेवा में मैं रख चुका हूं प्लेयर में सुनाने के लिए। राजा मेहदी अली खां एक महान लेखक था जिसके साथ मदन मोहन जी ने बहुत काम किए और उन्हीं के अल्फाज में आप सुनेंगे लता जी के मधुर आवाज में। अगर मुझ है मोहब्बत है, क्या बात है, कंपोज बाय माएस्ट्रो मदन मोहन जी फ्रॉम द मूवी आपकी परछाइयां, ऑल्सो फ्रॉम 1964।

0: aan de mens. Blaise Pascal, hij was een Frans wiskundige en natuurkundige en filosoof, leefde van 1623 tot 1662. Blaise Pascal, ik ga hem een uitje barmerken. In ieder mens is er een oneindige afgrond die men alleen met God kan vullen. Albert Einstein, Mahagyani, ook de uitvinder van de atoombom. Hij was een Duits-Amerikaans natuurkundige, leefde van 1879 tot 1955. Albert Einstein, ik ga hem een uitje barmerken. De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze. Het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert. Freek de Jonge, hij is een Nederlands cabaretier, geboren 1944. Freek de Jonge, een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. Een doordenkertje hoor. Heel goed, Freek. Aldous Huxley. Hij was een Engels schrijver, leefde van 1894 tot 1963. Over Aldous Huxley, ik ga hem een uitje barmerken. Ervaring is niet wat een mens overkomt. Het is wat een mens doet met wat hem overkomt. En de laatste van vandaag, Kaisi Confucius. Hij was een Chinees filosoof en leefde van 479 voor Christus tot 551 voor Christus. Boti Purane Zamanika Admita. Or Confucius, Chinese filosoof, Nikahai Manushiki Barmiaruki. Het is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt. Kya baat hai boti. Satya baat, satya vachan, uncha baat, Nikahai Chinese filosoof Confucius जी ने तुम्हारे पेपरी श्रोताओं अभी आप कुछ उदाहरण कहावतें सुने जो मनुष्य के बारे में जाता है we've net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen ये अशोमी लेकर इन बातों को मैं श्रोताओं को सुनाया कि कुछ ना कुछ सीख तो जरूर इन बातों से हम लोग सीखेंगे ना तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं यारो अब आप कुछ बातें सुनेंगे ये महान संगीत के बारे में कुछ अनसुनी बातें और खास करके उनके बेटा समीर मदन मोहन कोहली के आवाज में आप उनके पिताजी के द ग्रेट मदन मोहन जी के बारे में कुछ बातें सुनेंगे मिलके सुनते हैं
1: नमस्ते मैं हूं एकता जैन और आज का हमारा एपिसोड सिर्फ म्यूजिक पे रहने वाला है वो म्यूजिक जो हर किसी को पसंद आता है हर किसी के दिल के करीब है और हमारे दिल के करीब जो होने वाले हैं आज होने वाले हैं मदन मोहन जी के बेटे समीर मोहन जी हेलो
2: हाय हाय एकता थैंक यू
1: आई नो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा
2: रही हूं इससे पहले कि आप कोई सवाल पूछें मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके और आपके देखने वालों को कि इस साल मदन जी को हमसे बिछड़े हुए एग्जैक्टली 46 इयर्स हो जाए और अगर इतनी सालों के बाद भी आप लोग याद करते हैं उन्हें आपके लिसनर्स याद करते हैं ये कुदरत का करिश्मा है एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू ऑल हिज ऑल द लवर्स ऑफ म्यूजिक एंड पीपल हु लव हिज म्यूजिक फॉर हैविंग केप्ट हिम एंड हिज फिनोमिनल लेगेसी अलाइव थैंक यू सो मच अब आप पूछें जो आप पूछना चाहते
1: हैं मैं ये सबसे पहले तो आपने सुना रहेगा कि मैं कैसे हड़बड़ा रही थी उनका इंट्रोडक्शन करने के लिए बिकॉज
2: बिल्कुल हड़बड़ाइए
1: नहीं सच अ ग्रेट मैन
2: थैंक यू सो मच
1: बिकॉज वी कैन नॉट से इन वर्ड्स कि वो क्या थे उन्होंने क्या काम किया हमारे
2: जी आप मानेंगे नहीं कभी कभी मेरी भी जबान थरथराने लगती है जब उनके बारे में बात करता हूँ
3: Het is Amazon Prime Day. 2 dagen lang geweldig.

0: sorry about that.
1: No, John, please. But
0: हम मदन जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, फिर वो इंडिया कैसे आए, बिकॉज हमने जहाँ तक सुना है कि वो कहीं और से इंडिया आए।
1: जी नहीं, ऐसा है कि मेरे पिताजी की पैदाइश बगदाद में हुई थी, जो इराक का कैपिटल है। उस जमाने में अंग्रेजों की मिल्कियत थी, पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और मेरे ग्रैंडफादर वहां इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल थे। तो 1924 में 25 जून को मदन जी की पैदाइश बगदाद में हुई, और फिर करीब 7-8 साल बाद जब इराक अंग्रेजों से आजाद हुआ, तब मेरे ग्रैंडफादर अब वापस आ गए अपने होम टाउन, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, चकवाल नाम का एक छोटा सा शहर है रावलपिंडी के पास, और फिर मदन जी की कुछ साल वहाँ पैदाइश हुई, और फिर बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में मेरे ग्रैंडफादर बॉम्बे शिफ्ट हुए। पहले बॉम्बे टॉकीज में पार्टनर बने, देविका रानी उसकी मालिक थी उस जमाने में, हिमांशु राय उनके हस्बैंड, और बाद में फिर बॉम्बे टॉकीज छोड़ के फिल्मिस्तान स्टूडियोज के पार्टनर बने। तो मदन जी की बेसिकली स्कूलिंग मुंबई में ही हुई है, सेंट मैरीज स्कूल।
0: वाओ, ओह माय गॉड, दैट इज सच अ लॉन्ग जर्नी ऑफ
1: वेरी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम बगदाद टू चकवाल टू मुंबई। यस,
0: एंड मुंबई से हमारे सबके दिलों में।
1: नहीं, ऊपर मुंबई से भी एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सफर है कि मेरे ग्रैंडफादर हालांकि स्टूडियो के मालिक थे
0: जी,
1: मदन जी उस जमाने में अपने यंगर डेज में शौक था कि मैं थोड़े बहुत एक्टिंग करूं, म्यूजिक में आऊं, मेरे ग्रैंडफादर नहीं चाहते कि वो फिल्मों में आए। तो उन्होंने उनको आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। पहले देहरादून में एक स्कूल है विच बेसिकली ट्रेन्स पीपल फॉर द आर्मी, तो वहां पे करीब एक साल रहे स्कूलिंग खत्म करने के बाद, और फिर जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ तो मदन जी ज्वाइंट द आर्मी, एंड 2 साल के लिए वो फौज में रहे। 1944 और जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ उन्होंने आर्मी छोड़ दी।
0: बट हाउ आर्मी एंड म्यूजिक,
1: अब वो क्या आर्मी तो इसलिए हुआ जैसे आंसर का कि मेरे ग्रैंडफादर का थोड़ा सा बहुत दबाव था उन पर, पर बेसिकली शौक तो म्यूजिक का था। फिर उन्होंने आर्मी छोड़ी तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में उन्हें एक नौकरी मिल गई। वो पहले 1-2 साल वहाँ रहे, फिर दिल्ली आए पर कुछ खुश नहीं रहे, और फिर वापस बॉम्बे आए स्ट्रगल करने के लिए। बट हुआ क्या कि मेरे ग्रैंडफादर को बिल्कुल ये बात रास नहीं आई, उन्होंने उनको लिटरली एक तरह से कहूँ तो घर से बेदखल कर दिया। तो मदन जी जो भी बने छोटे या बड़े अपने बलबूते पे बने,
0: छोटे बड़े नहीं होते।
1: नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल, उनको इसके बावजूद कि मेरे ग्रैंडफादर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे, मेरे ग्रैंडफादर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला अपना करियर शुरू करने में और बनाने में। मैंने तो कई आर्टिकल्स उनके पढ़े हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं 6-6 दिन रोड पे सो रहा हूँ, मैंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया है, बट एक जिद थी कि मुझे म्यूजिक की बिजनेस में ही, म्यूजिक की दुनिया में ही आना है।
0: तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो जिस साल में मिला, तो उसके इंसिडेंट के बारे में हमने सुना।
1: वह क्या है कि उस वक्त तक मैं आपको सीरियसली अगर बताऊं तो मदन जी थोड़े से ऊब गए थे, थोड़े से डिसिल्यूजन हो गए थे कि इतने साल इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें कभी उस किस्म की रिकग्निशन मिली नहीं। तो ये जब मिला उन्हें, ये फिल्म थी दस्तक, संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान इसमें थे, और जब मैंने उनको जाके खबर दी तो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल से मनाना पड़ा कि यू एक्चुअली वन इट, बिकॉज वाई देन ही वॉज अ लिटिल डिसिल्यूजन एंड लिटिल कट अप विद द वे द इंडस्ट्री वाज ट्रीटिंग हिम।
0: ओके,
1: आर्टिस्ट थे ना, अब क्या करें, आर्टिस्ट थोड़े से सेंसिटिव होते हैं बेसिकली।
0: और लता जी के साथ उनका कैसा रिश्ता था? लता जी के साथ सुना है कि मतलब कुछ ज्यादा ही
1: ऐसा है कि क्लोजनेस था। मैंने भी सुना है कि लता मदन जी के साथ, इससे पहले कि मदन जी म्यूजिक डायरेक्टर बने, मदन जी ने अपने एक फादर की एक फिल्म बनी थी शहीद, उसमें लता जी के साथ एक डुएट गाया था, बच्चों का गाना था। तो उस वक्त लता जी से पहली मुलाकात हुई थी उनकी, और उस वक्त उन्होंने लता जी से कहा था कि अगर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप ले गाएं। पर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री का कभी कभी रिवाज है, लोगों ने जाके लता जी के कान भर दिए कि बड़े बाप के बेटे हैं, पता नहीं कितना सीरियस है। तो मेरे फादर की जो पहली फिल्म थी आंखें, इसके बावजूद कि लता जी को ऑफर गया था, वो उन्होंने उस फिल्म में गाने से इनकार कर दिया।
0: ओके,
1: तो उसके बाद लता जी जाके मिले उनसे और उनसे मुलाकात हुई, और बड़ी सपोजिटली इमोशनल मुलाकात हुई। उसी मुलाकात में उन्होंने उनको अपनी बहन बना दिया, और लता जी ने एंड तक ना ही उनकी बहन बनने का नाता निभाया, हमें हमारी तो गॉड मदर रही, हम बच्चों को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला है. इट्स बीन अ वेरी स्पेशल बॉन्ड एंड अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप. और उनकी लिटरली कभी कभी बेटी भी बुलाते थे उन्हें, तो इट वॉज वेरी स्पेशल बॉन्ड.
0: यस यस यस यस. तो उनके फेवरेट सिंगर कौन थे?
1: लता मंगेशकर. वो तो कभी कभी ये भी कहते थे कि अगर मैं कोई मेल सॉन्ग भी बना रहा हूँ तो मैं सबकॉन्शियस ये सोच रहा हूँ कि अगर लता गाती तो कैसे
0: गाती.
1: रफी साहब वाज द वेरी फेवरेट. रफी साहब किसके फेवरेट नहीं थे?
0: किसी के फेवरेट, सबके फेवरेट.
1: इन द अर्ली डेज ऑफ हिज करियर वेरी डियर फ्रेंड विज तलत महमूद साहब सैंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बट देन ही फेडेड आउट अ लिटिल बिट. तो बेसिकली रफी साहब, लता जी, आशा जी टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ कोर्स.
0: सो ये उनकी जो जर्नी थी एंड उसके बाद हमने सुना कि उनके ऊपर एक स्टैंप आई थी, 5 रुपए की स्टैंप.
1: नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 5-6 साल पहले की बात है. करीबन 100 करीबन इंडस्ट्री के 100 पर्सनालिटीज पर उनको ये स्टैंप बना था. एंड ही वाज वन ऑफ द लकी वंस टू हैव बीन चोजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
0: Wow.
1: To give him this honor.
0: But it's really an honor ki like aapke naam se aapke photo ke saath ek stamp.
1: Bilkul, bilkul, bilkul.
0: And it's a symbol of India.
1: Absolutely.
0: Okay, to jo unki jo last film mein jo music aaya, hum kehte hain ki Veer Zara mein unka jo music aaya, to how is the feeling about that thing?
1: It's unbelievable. Because dekhiye kya hai ki उस जमाने में, उन जिस जमाने में वो म्यूजिक देते थे, फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार सबसे बड़े हीरो थे, पर दिलीप साहब के साथ उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं की बिकॉज वो कमर्शियली उस ब्रैकेट में कभी आए ही नहीं. तो ये तो अजूबा था. आई मीन इट्स आई थिंक इज द ओनली कंपोजर इन द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम्स टू जिनका ओरिजिनल काम उनके जाने के 30 साल बाद लोगों के सामने आया. ओरिजिनल काम जो पहले कभी लोगों के सामने नहीं आया. ये धुनी उनकी आवाज में उनके स्कूल से पढ़ी थी, हमें मिली थी. मेरे भाई साहब जो उस वक्त यश चोपड़ा साहब के लिए काम कर रहे थे, उनको सुनाई, उनको अच्छी लगी. द रेस्ट इज हिस्ट्री. वो फिल्म बनी, वो म्यूजिक बहुत, और उन्हें उस फिल्म के लिए अपना पहला पॉपुलर अवार्ड, द आईफा अवार्ड 2004 का मिला.
0: वाओ,
1: द ओनली पॉपुलर अवार्ड ऑफ हिज करियर. न्यू फुलतारा नेचुरल.

0: तो लता जी की जो हमने स्पेशल बॉन्ड की बात की, उन्हें लता जी एक स्पेशल नाम से भी बुलाती थी, वो
1: मदन भैया
0: नहीं, देयर इज समथिंग एल्स, गजल के
1: बादशाह। वो क्या है, एक फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में, जिसका नाम था अदालत। अदालत की थी, अदालत वाज अ स्टोरी ऑफ दिस गर्ल हु बिकम्स अ नॉच वुमन, यंग लड़की, पढ़ी लिखी लड़की। तो उसमें गजलों का स्वर स्कोप था, वो मुजरा गाती है, तो उसमें तीन गजलें इतनी मशहूर हुई, हालांकि फिल्म नहीं चली, पर तो उस पर के बाद ऊपर एक स्टैंप लग गया। और ये बात सही है कि फिल्मों में गजलों का जो चलन चला वो बादल जी से ही शुरू हुआ, और बादल जी डिड फिनोमिनल वर्क, बट इट्स नॉट दैट द ओनली, दैट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ वर्क ही डिड। उन्होंने हर किस्म का गाना बनाया है। अब आप देखिए, तुम जो मिल गए हो, आज लोग कहते हैं इट्स द अल्टीमेट वेस्टर्न सॉन्ग इन हिंदी फिल्म्स, वो भी उनका है
0: जी।
1: तो हर किस्म का, लग जा गले भी उनका है, तो हर किस्म के गाने बनाए। अब लग जा गले, आपको मालूम होगा, आप यूट्यूब पे इतना काम करते, 200 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक ऑलमोस्ट 12,000 to 13,000 वर्जंस ऑफ दैट सॉन्ग ऑन यूट्यूब।
0: वर्जंस अभी आजकल कवर,
1: तो ये जो अनफॉर्चुनेटली ये जो सक्सेस उनके नाम आई है, अनफॉर्चुनेटली उनके जीते जी उन्होंने नहीं देखा। लेके चला गया साथ, he was a little disillusioned towards the end of his life, because he felt he was not wanted, he felt people don't appreciate him, वो एक दिल में एक फीलिंग आ गई थी कहीं ना कहीं।
0: Oh my God, like कभी भी, हमेशा हम लोग ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ये हमेशा सुना है कि किसी को कुछ अप्रिसिएशन उसकी जीते जी नहीं मिलता है, जैसे हमने मदन जी के बारे में सुना, सेम वैसी ही बात हमने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुनी। जब वो जिंदा थे तब उनके पास उतनी अप्रिसिएशन उन्हें नहीं मिली, उनके मरने के बाद जो उनकी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई, दैट मेड लाइक हिस्ट्री।
1: एब्सोल्युटली।
0: सो आई डोंट नो व्हाट्स विद द फिल्म इंडस्ट्री और ये,
1: मतलब दे फॉलो एन एडेज कॉल्ड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सो ठीक है, इट्स इन द बेट, ओके। आखिर प्रोड्यूसर अपना पैसा डालता है फिल्म में, तो वो तो चाहते, मदन जी पे के बारे में लोग कहते म्यूजिक तो उनका बहुत अच्छा है बट फिल्में चलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, और मदन जी वाज अ वेरी वेरी प्राउड एंड अ वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन। उन्होंने कभी किसी के पास वो गए नहीं काम मांगने के लिए, कभी किसी से कहा नहीं कि मुझे काम दो, वो अपनी जिंदगी अपने असूलों पर जीते रहे। और शायद ये इंडस्ट्री उन लोगों को अप्रिशिएट नहीं करती जो लोग असूल पसंद लोग हैं।
0: तो मदन जी ने जो फिल्म में तो काम किया है, उनके अलावा जो हम कहते हैं नॉन फिल्मी एल्बम्स,
1: नॉन फिल्म एल्बम्स नहीं थे,
0: कभी नहीं किए उन्होंने, ही वाज नॉट ड्रॉन टू इट,
1: उस जमाने में वो चलन था ही
0: नहीं,
1: not to a great extent.
0: Okay.
1: और मदन जी एक चीज आपको याद है, मदन जी died very young. He was only 51 when he passed away. He had a lot of music left in him, but that's the way life is.
0: That's the way life is. So ये थे समीर जी मदन मोहन जी के सुपुत्र।
1: बिल्कुल।
0: And we had
1: very very proud to be his son.
0: Yes, very proud son. And
1: ऊपर वाला मुझे हर जन्म में उनका बेटा बना। नहीं, मैं सच ही कह रहा हूँ।
0: तथास्तु।
1: Thank you.
0: I am being little funny here.
1: No, it's absolutely.
0: But that's how the life goes on. You have to live it on.
1: No, we are. और देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आज 46 साल हो गए। मैं वो जब गुजरे, मैं 14 साल का था, आज मैं 60 साल का हो चुका हूँ। तो वक्त निकल गया, पर एक चीज जरूर है कि जितना उनके जाने के बाद उनके म्यूजिक को अप्रिसिएशन, इट्स अनबिलीवेबल, मैं आपको बता नहीं सकता। इट इज सिंप द वे ही इज रिस्पेक्टेड बाय द यंगर जनरेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड लॉट ऑफ द सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स। उनका नाम जब कहीं लिया जाता है तो लोग इज्जत से सर झुकाते हैं अपना। ये अजूबा है, दिस इज अ मिरेकल, एब्सोल्युटली, एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड हिज फैंस फॉर दैट।
0: Yes, yes. Thank you very much.
1: Thank you, Ekta ji. Thank you so much.
0: तो ये थे समीर जी, and I hope कि आप लोगों ने enjoy किया हमारी chit chat, because ये थोड़ा सा sun का problem, ये वो बहुत कुछ चल रहा था, but we had an amazing life journey of Madan Mohan ji. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि starting में I was stammering, I don't know what to say, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए उनके लिए, बट जब उनके बेटे से बात की तो अच्छा लगा कि समीर जी ने हमें उनकी पूरी लाइफ जर्नी से हमें गुजारा. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग. आई होप यू ऑल लाइक इट. थैंक यू वेरी मच.
2: तो जी हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप अभी कुछ अनसुनी बातें सुना जो ये महान संगीतकार मदन मोहन जी के बेटा समीर मदन मोहन कोहली जी ने आप श्रोताओं को सुनाया. तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा. तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज़ है, जनता का आवाज़ है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज़ है. तो ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं जाना मत.

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहाँ मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए है। मित्रों, और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोलत है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करियो, उसे लुकू सहंगा दो दू नंगाइयो। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियाँ भी, सभी लोग को पीड़ा होती है। मित्रों, इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवे यूना एस्तमंग दो सबके देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। हम दूसरे के काहे भलाई करिए, पहले वापन करिए। मित्रों, ठीक है, करते रहो, जैसे जिए चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे। हाँ।

0: मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानि मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिली स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त। बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रहली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे। ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है।
1: मित्रों, इस भजन को सुनकर

मित्रों कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर। क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच्चे किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू, तो प्रॉब्लम बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, दयोशीफायक हुआ वो लोग मित्रों। क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट आई

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, कोशिश करें, मुक्ति करें, और चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है। कोई आपको कुछ बोले, चुप रहो, वो खुद समझ जाएगा कि वो बेकार को बक रहे हैं। है? तो चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा, मी ने हो फरकीफिंग, तब मरो लेके, अगले जन्म में कहाँ जइयो, का करियो पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो, का हो जाए तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तुम में कामियां भले ही हजारों हों, गलतियां भले ही हजारों हों आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, पिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं, खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे, प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे, हैं? नहीं समझ पाओ।

मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं, आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पर चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइ तुकोम्स ऑफ यू फॉर्म द लीफ दैट बेन या इज हेल्फ और ना कोई और। सत्य से मित्रों ध्यान करना, हम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी, फ्रॉड, लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे? रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो, हैं, उसमें क्या बात है मित्रों। तो गलत काम मत करिए, नगो दूलौलो सानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम अपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, और ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की का है, बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लाओ लाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान है ऑफ दान हार, यू लव खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है? आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो क्या हम बोलत है। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तुमको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कान का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि ये उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हैं उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोइयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत है कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत है। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का होगा। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू।

0: प्रीति।
1: मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एको बड़का होल है जो इंतजार करते है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यही रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेथ है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबकी कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई छल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों। जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

सर्दियों में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया, एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे, सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। किस किस

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।